0: कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
2: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
1: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।

0: Só pra fazer um patinho. Au, au, au. Cão, cão, cão.
1: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे, क्यों? है ना कोयल बहन? कू, कू।
2: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ? समझ नहीं आता।
3: मेरा भी कुछ यही हाल है।
0: तो ये बात है। अच्छा बात मेरी तो मानो। करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
1: क्या
4: क्या
1: क्या?
0: ऊंचा सब तक कोयल गाए, नीचा सब तक सब सुनाए। सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
5: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: दम लगा के कू।
3: हईशा।
1: दम लगा के कू।
3: हईशा।
0: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम। चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
3: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
3: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का का का।
6: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: तो बस रट ही पकड़ ली।
1: भाव भाव, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ। शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: हाँ हाँ, इसकी यही सजा हो।
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। मैं हूँ कमुआ, अरे उठो आंखें तो खोलो भाई।
0: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: सुनते प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले

गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଶୁଭ ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20

0: टीम मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगना।

0: रानी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने

0: असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बम्पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's

0: खाना पीना सब होइची
1: मो खाई छी दिल्ली चूड़ा बिस्कुट
0: चूड़ा बिस्किट अपन खाई छन बढ़िया सुंदर खाद्य किछ असुविधा नै तबे कोन कहबे आज रो टॉपिक उपरे
1: टॉपिक त मतलब प्राय समस्त सहाय्य करोंदी संग माने भाउज माने साहिर जत करछंदी भाई माने भी भौणी भी सहाय्य करे मते दीदी मो जानत कि मो विषय जानि नै मो हैंडी कैप झोटे
0: अच्छा तेणु आपण को समस्ते सहाय्य करंती जहाँ टिके दरकार पड़ले आपण
1: को बाटर जदे भी जाउ थी दीदी हां माने मु जाउ जाउ थी बाटर से माने बाटर पछि के जेबे मु बाटर जेबी
0: वाह बहुत बढ़िया एमती गोटे सुंदर मानसिकता समस्त रखी छंती आपण को पई सेति पे आपण बहुत खुशी रह छंती
1: आउ आउ गोटे प्रश्न होइतला हे जने जे जीजु हेबे बिना हेबे से भी हे बहुत सहाय्य करछंती हम पुत्र भी बहुत सहाय्य करछंती
0: वाह बहुत बढ़िया एमती समस्त साहस्य सहयोग पाई आपण खुशी रे अछंती शांति रे अछंती आमको जानी बहुत भल लागिला आम सहित कनेक्ट हेथिबार आपण को बहुत बहुत धन्यवाद
1: रखु जी अपा नमस्कार
0: नमस्कार

0: এটি শেষ করছ রেনবো এসএমএস প্রোগ্রাম আকাশবাণী এফএম রেনবো কাটাক। আমার পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করছ আকাশবাণী এফএম রেনবো দিল্লির।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी हैं और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवम्बर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाला। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह हुई बारिश से दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। और खेलों में फीफा विश्व कप राउंड ऑफ 32 के बीच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। डूरन कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत महीने की 25 तारीख को कोलकाता में होगी।

टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं लेकर आई हूं बहुत सारी बॉलीवुड की बातें, जहां पर बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोग और बॉलीवुड जगत में क्या क्या हलचल हो रही है वो सारी बातें आपको यहां पर पता चलने वाली है ठीक 12 बजे तक। और साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का क्विज भी आपके साथ खेलेंगे, तो सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड की बातें।

भाई तुम ही दिन डले, तुम ही दिन चढ़े, हम आपके साथ हमेशा बरकरार हैं। इंफोटेनमेंट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम है और बॉलीवुड की बातें तो होंगी होंगी, क्योंकि बॉलीवुड की बातें होने के लिए ही तो बॉलीवुड ट्रेल्स है। और बॉलीवुड की बातें होती हैं तो जरूर से हम इस बात में बात करते हैं कि कल कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है। और जिस फिल्म की बहुत ज्यादा चर्चा है उसका नाम है अल्फा। जी हाँ, आलिया भट्ट स्टारर मूवी है ये, शबरी वाघ है इसमें और साथ ही साथ एक छोटे से कैमियो में ऋतिक रोशन भी आपको दिखाई देंगे एजेंट बनकर। हाँ, एक एजेंट के तौर पर काम करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन इसके साथ साथ ही आपको बता दें एक और फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, वो कौन सी है? महेश बाबू। वैसे तो अगले साल प्रियंका चोपड़ा के साथ एक SS राजामौली की जो फिल्म है वाराणसी, वो लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस एक्टर ने एक गजब का हाँ थोड़ा सा सस्पेंस जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको दे दिया है। जी हाँ, साउथ के जाने माने फिल्म मेकर वेंकटेश महा के निर्देशक में बनी और साथ ही साथ जो महेश बाबू हैं उनके और उनकी पत्नी नर्मदा शिरोडकर के प्रोडक्शन में बनी हुई एक मूवी आ रही है राव बहादुर, जो कल रिलीज होने वाली है। जी हाँ, धमाकेदार ट्रेलर के साथ ये फिल्म अनाउंस हो चुकी है और सस्पेंस के साथ कूट कूट कर ये फिल्म भरी हुई है, यानी कि सीधे सीधे अल्फा से इसकी टक्कर होने वाली है। आप बोलेंगे साउथ इंडियन मूवी है तो कैसे टक्कर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो अल्फा मूवी है इसे पैन इंडिया में रिलीज किया जा रहा है और जो राव बहादुर है साउथ में चलेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और इसका जो हम ट्रेलर देख रहे हैं उससे हमें ये साफ पता चलता है कि एक एक जो स्क्रीन मूव हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अलग अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। जी हाँ, बखूबी इसे उतारा गया है और शक है, जिंदगी बदल बदल कर इसमें आपको इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ट्रेलर में दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो बात है, इतना ढेर सारा जो सस्पेंस है वो इसमें क्रिएट किया गया है, तो ये फिल्म तो कहीं ना कहीं अल्फा को टक्कर देने वाली है। फिलहाल हमारी आलिया को हम एक अलग मूड में, एक अलग जॉनर में देखने वाले हैं और जब देखेंगे तो कंपैरिजन हो ही जाएगा। अभी बिलाल हाईवे का ये गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड रेल्स। बॉलीवुड की बातें हो रही हैं यहाँ पर, और जब बॉलीवुड की बातें हो रही हैं तो हमने अल्फा की बात करी, और अल्फा जैसे आपको पता है यहाँ पर मेन लीड में आपको दिखाई देंगी आलिया भट्ट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेन लीड में हमारी महिला प्रधान फिल्म बनने वाली है, यानी कि कुड़ियों का ही जमाना है और एक फिल्म

जैसे आपको पता है यहाँ पर मेन लीड में आपको दिखाई देंगी आलिया भट्ट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेन लीड में हमारी महिला प्रधान फिल्म बनने वाली है, यानी कि कुड़ियों का ही जमाना है। और एक फिल्म जिसकी ने एक अलग ही छाप छोड़ दी थी उसका नाम था क्वीन, और अब क्वीन 2 भी आने वाली है। शूटिंग खत्म हो चुकी है इस फिल्म की, लेकिन क्वीन 2 की कास्ट को लेकर बड़ी सनसनीखेज अपडेट्स आती रहती हैं। हाँ, मेन लीड में तो हमारी कंगना है, लेकिन मेन लीड एक्टर कौन होंगे इसमें, चलिए बताते हैं आपको, सुनिए बहुत ध्यान से। और जब मेन लीड की बात आती है तो अभी रिसेंटली भारत भाग्य विधाता कंगना रनौत की फिल्म थी और अब वो क्वीन 2 में नजर आने वाली है, जिसका डायरेक्शन विकास बहल कर रहे हैं, जो अजय देवगन की शैतान जैसी फिल्म को सफल बनाते हुए आ रहे हैं। और लंबे समय के बाद क्वीन 2 की चर्चा होगी, क्योंकि देखना यह है कि कौन, मतलब अब स्टोरी क्या होने वाली है। हाँ जी, लेकिन अब जब रैप अप हो चुकी है पूरी शूटिंग का, तो ऐसे में सब ये हैरान और परेशान है कि कौन है आखिर लीड एक्टर। तो आपको बता दें कि लीड एक्टर है सुबोध। कहा यह जा रहा है कि रैप अप पार्टी में सुबोध को कंगना केक खिलाती हुई नजर आई थी, और मेरे हिसाब से जब ऐसा होता है तो लीड एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं जो आपस में केक को शेयर करते हैं। तो ये अनुमान लगाई जा रही है, कयास लगाई जा रही है कि सुबोध ही इस फिल्म के मेन लीड एक्टर होंगे। ये पहला मौका नहीं होगा जब सुबोध और कंगना किसी फिल्म में एक साथ काम शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहला ही मौका है, और इससे पहले बहुत सी मराठी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। पखारू पखारू, रणमूल, अनुमानी, बाल गंधर्व, लोकमान्या, एक युगल पुरुष, पाणी, हर हर महादेव, ऐसी फिल्मों में उन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया और बहुत पॉपुलरिटी हासिल किया। अब देखना यह है कि हिंदी फिल्मों में उन्हें कंगना के साथ कैसे देखा जाता है। अभी अभी फिलहाल आप सुनिए क्वीन का गाना।

बॉलीवुड रील्स, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। बॉलीवुड की बातें चल रही हैं, यहाँ पे एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली हैं और उनका बेसब्री से आप सभी को इंतजार रहता है। आयुष्मान खुराना की बात करें तो हमेशा अलग तरीके की फिल्म लेकर आते हैं, इनके जो रोल्स होते हैं फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, चाहे वो विकी डोनर हो या फिर कोई और फिल्म में, अलग तरीके की उन्होंने हर रोल को निभाया है और एकदम डिफरेंट स्टोरीज होती है। और अब रिसेंटली ऐसा कुछ होने वाला है, अभी ऐसा नाम आने वाला है कि कोई एक फिल्म करने वाले हैं, या वो कौन सी फिल्म होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना पड़ेगा। अभी ये गाना सुनिए और फिर बताते हैं आपको कौन सी फिल्म होगी वो।

हाँ जी, पति पत्नी और वो दो फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे। अब रिसेंटली आयुष्मान की ये फिल्म आई है और बिल्कुल अलग तरीके की फिल्म थी और कार्यक्रम मतलब काम भी उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा किया है इसमें। इनका काम काफी सराहनीय किया गया है। लेकिन अब रिसेंटली कहा जा रहा है कि उनकी एक फिल्म और आने वाली है। और कौन सी आने वाली है, कब आने वाली है जी हम बता दें कि अगले साल 2027 पे वैलेंटाइन डे के मौके

0: पर आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी और ये फिल्म किसकी होगी आपको बता दें, इस फिल्म का नाम होगा मू पापा। जी हाँ, मू पापा। और यशराज फिल्म्स और पोशम पा पिक्चर्स मिलकर बना रहे हैं इस फिल्म को और प्रोडक्शन का कोलैबोरेशन पहली बार हो रहा है और आयुष्मान इसमें लीड रोल करने वाले हैं, ये फिलहाल तय है। लेकिन आगे की जो कास्ट है उसका नहीं पता कि कौन कौन करने वाला है। हाँ, ये बता दें कि समीर सक्सेना इसे निर्देशित करेंगे और ये कौन है, इन्होंने ट्रिपलिंग, मेरी फैमिली, परमानेंट रूम में जैसी सीरीज बना चुके हैं और जितेंद्र कुमार स्टारर फिल्म जादूगर का भी निर्देशन इन्होंने किया है। तो अब जब इतनी अच्छी अच्छी सीरीज इन्होंने दी है तो फिल्म भी बहुत जबरदस्त होने वाली है और ये फिल्म होगी 19 फरवरी 2027 को रिलीज। आयुष्मान की अगली फिल्म कब आने वाली है ये भी आपको पता चलेगा आगे। सुनते रहिए हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी रेनबो पर वक्त हो चला है आपसे बॉलीवुड सरताज का क्विज पूछने का। आप सभी लोगों को है बेसब्री से इंतजार और बताएंगे आप हमें उस सवाल का जवाब, बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज। और जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा है। रिसेंटली आने वाली जो फिल्म है अल्फा, जी हाँ, जो कल रिलीज हो रही है, इस फिल्म में कैमियो करते नजर आने वाले हैं एक एक्टर, उनका नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। जी हाँ, अल्फा में कैमियो करने वाले एक्टर का नाम हमें लिखकर भेजिए 9868107070 पर और बन जाइए बॉलीवुड सरताज। जो सबसे पहले भेजेगा जवाब वो बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज। और अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो हमें मजा आएगा आपसे बात करके भी।

जी हाँ, मैं और तू यानी मैं और आप मिल करके बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ बॉलीवुड के बारे में हमें पता चलने वाला है। अभी रिसेंटली जो मूवी गई है, आ रही है, चल रही है, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, और इसी के बारे में हम आपसे बातें करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जबरदस्त चल रही है ये मूवी और बहुत सारे स्टार्स हैं अक्षय कुमार के साथ। 36 स्टार्स इस फिल्म में जगमगाते हैं। सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म भी कह सकते हैं, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भी कह सकते हैं, सिद्धिशा पाटनी स्टारर फिल्म भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टार्स हैं। किस किस का नाम लूं, किसको छोड़ूं, वैसे नाराजगी हो जाएगी इसमें तो। लेकिन बहुत सारे जबरदस्त एक्टर और एक्ट्रेसेस शामिल हैं इस फिल्म में, और ये फिल्म इस वक्त जो थिएटर्स है उनमें बहुत जबरदस्त कमाल धमाल कर रही है। और कमाल धमाल की बात की जाए तो हाँ, इस फिल्म ने अभी तक के 100 करोड़ का आंकड़ा जो घरेलू बॉक्स ऑफिस है उसमें तो पार नहीं किया है, लेकिन हाँ वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इस फिल्म का 108 करोड़ के आसपास हो गया है। फिल्म की जो बजट है वो 125 करोड़ के आसपास बनी हुई है, और अब मुझे लगता है कि जल्द ही, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में इस फिल्म को जरूर इसका मुनाफा मिलेगा। और अब क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उस चीज का फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है ना कि हमें भी मूवी देखनी है, हमें भी घुमाने ले जाओ, तो शायद कहीं ना कहीं उस चीज का फर्क अब इस वीक में दिखाई दे, ये फिल्म थोड़ी सी और बढ़े और इसका बजट जिस हिसाब से है 125 करोड़ का उसको क्रॉस करते हुए ये फिल्म एक अच्छा कलेक्शन कर पाए। अभी अभी अभी हम क्या सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं वेलकम टू द जंगल का ये गाना।

इस गाने को सुनकर पूरी जंगल वाली फीलिंग आई ना। हाँ बिल्कुल, धमाल वाला म्यूजिक और कमाल वाले स्टार्स इस फिल्म में हैं। और जब फिल्म की बात की जाती है तो वेलकम का सीक्वल प्रीक्वल जो भी कह ले ये फिल्म है। और नहीं, एक दूसरे से कोई स्टोरी मिलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगली सीरीज का इंतजार जरूर करते हैं जब एक कोई फिल्म रिलीज होती है और हिट हो जाती है। और उसी तरीके से ऐसी कई फिल्में हैं इंडस्ट्री में जिसका इंतजार, जिसके सीक्वल का, जिसकी अगली फिल्म का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। कुछ ऐसी एक फिल्म की बात बताऊं जैसे पीके है, इसके सीक्वल का भी हमें बहुत ज्यादा इंतजार है। उसी तरीके से मुन्ना भाई MBBS और मुन्ना भाई की जो थर्ड फिल्म बनेगी उसका भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। वैसे पीके के सीक्वल के बारे में राजकुमार हिरानी कुछ कुछ चीजें तो बोलते हैं कि इस फिल्म के जो सीक्वल है इसमें पीके के पोस्ट क्रेडिट से ये पता तो चलता है कि रणबीर कपूर को आगे दिखाया जाना है या नहीं, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि उनका बड़ा मन है कि वो रणबीर कपूर को अपनी आने वाली फिल्म, अगर वो पीके का सीक्वल बनाते हैं तो उसमें जरूर से लेंगे। और साथ ही साथ जब मुन्ना भाई की बात की जाती है तो मुन्ना भाई की स्टोरी काफी समय से इस पर

काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो मसाला है ना, जो ऑडियंस को पसंद आने वाला मसाला होता है, वो मसाला कहीं कहीं मिसिंग लगता है. तो वो वापस से फिल्म पर जो काम है वो शुरू कर देते हैं, फिर से उसको रिजेनरेट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छी लगे फिल्म. और मुन्ना भाई 3 जब बनेगी ना, तो ऑब्वियस ही बात है अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो बहुत जबरदस्त हिट हुए. पीके का भी अगर कहें फर्स्ट पार्ट, अब जो आएगा नेक्स्ट पार्ट या जो भी है वो हिट होना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब किसी फिल्म का हिट हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है सेकेंड पार्ट के लिए. तो दोनों ही कहानियों पर काम चल रहा है, राजकुमार हिरानी इस पर काम कर रहे हैं. लेकिन राजकुमार हिरानी का नाम मैं क्यों ले रही हूं, मैं आपको बताऊंगी. संजू के साथ उन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया है संजू बना करके, और अब आने वाली जो उनकी फिल्म है उसके बारे में भी बताऊंगी कौन है उसमें हीरो. आप सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड रील्स.

वैसे फिल्म में दुनिया के गोते बहुत सारे हैं, ओटीटी एक ऐसा गोता है जिसमें हर कोई डूबना चाहता है, और अब राजकुमार हिरानी भी इस समंदर के एक बड़े मछुआरे बन चुके हैं। जी हाँ, वो भी आ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में।

अपनी एक फिल्म लेकर जिसका नाम है प्रीतम और पेड्रो। और प्रीतम पेड्रो किस पर बेस्ड मूवी है? जी हाँ, ये है साइबर क्राइम पर बेस्ड मूवी। और इस फिल्म में बहुत सारी स्टार कास्ट है, बोमन ईरानी, संजय दत्त, विक्रम मैसी, अर्शद वारसी, नैना सरीन, विनोद नागपाल, मोना सिंह और वीर हिरानी। जी हाँ, वीर हिरानी और कोई नहीं, राजकुमार हिरानी के बेटे हैं और इतना आसान रास्ता नहीं है उनके लिए। उन्होंने कहा इस प्रोसीजर के लिए यहाँ पर मेन लीड में काम करने के लिए उन्हें एक ऑडिशन देना पड़ा है, और अच्छा खासा ऑडिशन देना पड़ा। और उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया था इस बात के लिए कि इस रोल में अगर तुमको फिट बैठना है तो तुम्हें ऑडिशन क्लियर करना पड़ेगा, तभी तुम इस रोल पर फिट हो सकोगे। कल ये फिल्म रिलीज हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और देखना यह है कि कहानी बहुत छोटी छोटी छोटे छोटे किरदारों के साथ एक बड़ी कहानी बन रही है। तो अब ये देखना है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में राजकुमार हिरानी है, क्या पेश करने वाले हैं हमारी जनता जनार्दन को। अभी फिलहाल ये गाना आप सभी लोगों के लिए एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम चल रहा है और जहां तक बात आती है हमारे बॉलीवुड सरताज की, तो आज मुझे लग रहा है मैंने दो दो लोगों को कॉल किया और दोनों लोगों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अब कहीं ना कहीं मौसम की खराबी का भी कह सकते हैं कारण और कहीं ना कहीं लक की भी बात है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम फिर भी अनाउंस करेंगे उनका नाम कौन है वो और कौन है वो। आसिफ सैफी ये थे रास्ते में, इनकी आवाज बहुत ही ज्यादा खराब आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मौसम की नजाकत है और आज बने हैं ये हमारे कौन, बॉलीवुड सरताज। और बॉलीवुड सरताज जब बनते हैं तो हमने प्रश्न पूछा था, क्या बहुत आसान सा, अल्फा में कैमियो करने वाले एक्टर का नाम क्या है, और उन्होंने बताया ऋतिक रोशन। हाँ जी, शर्वरी वाघ भी इस फिल्म में है और क्या है फिल्म का हाल अब वो कल पता चलेगा। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगी अगले प्रोग्राम में ठीक 1 बजे, जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और अपनी अच्छी अच्छी सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेजिएगा और बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो फुलफिल कर सकूं। अभी मैं लेती हूं अभी थोड़ी सी इजाजत, और इजाजत इसलिए ले रही हूं कि अगला जो प्रोग्राम आपके लिए आने वाला है वो है प्ले इट कूल, रेणुका लेकर आएंगे इस प्रोग्राम को, तो एंजॉय कीजिए उनके साथ।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथी के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश परवथानिनी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट वैश्विक कार्यवाही का आह्वान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के बीच मैच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। डूरन कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: You are tuned to Akashwani Rainbow 102.6 and listening to Play It Cool with your amigo Renuka. And today I am giving you facts about the month July. Yes, so despite it being the first month in the second half of the year, July 1st is not actually the middle of the year. Yes, in a regular non-leap year, the midpoint is actually on 2nd of July at 1 p.m. So in almost about 40 minutes we'll be in the middle of the year. Up next we have the track by Accent and the song is

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: This is Akashvani Rainbow 102.6 and you are listening to Play It Cool. And today I'm giving you some interesting facts about the month July. So July has two birth flowers, the water lily and the larkspur. The water lily is a symbol of a pure heart, while the larkspur, especially its white form, represents the lightness of the heart. So if you know someone who is born in the month of July, please try to gift them these flowers, or you know, just tell them this information. Up next we have Bee Gees with a track

0: ever do.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: You are tuned to Akashvani Rainbow 102.6 and listening to Cool Numbers in the program Play It Cool with your amigo Renuka. And today I'm sharing some fun facts about the month July. And as I said that July was not called July earlier, it was called Quintilis. But you know, the Anglo-Saxons had multiple names for the month of July, including Maedh Munath and Hay Munath. Respectively, these translated into the flowering of meadows and hay month. Hay month, hay July. You can also share some facts if you know about this month and let me know. And up next, I have this cool number lined up for you, which is

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिस इज आकाशवाणी रेनबो 102.6 एंड अक्वा इज वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स लिसन टू हर।
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री शिनाए ताकायशी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उनके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश परवथानेनी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में भगवती नगर यात्री आवास आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइलों के हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के मैच में अमेरिका ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। उधर बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को और इंग्लैंड ने कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की है। डूरंड कप फुटबॉल के 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, उसका क्या है नाम? जी हाँ, मेरा वाला सॉन्ग। और मेरा वाला सॉन्ग में मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। आपकी पसंदीदा गीतों को सुनाने के लिए मैं हूँ तैयार और आप भेजिए हमें अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट 9868107070 पर। आप भेज सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और एक से बढ़कर एक गीतों की फरमाइश कीजिए, मैं मजबूर हो जाऊं आज आपके पसंद के गीत को बजाने के लिए। फिलहाल अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा टिप टिप वाला है तो फिर क्यों ना यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास किसने की है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन्होंने ये फरमाइश की है कि ये मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए। हाँ जी, टिप टिप टिप टिप पानी बरसने लगा है और होप्सो कि बरसात का जो मौसम है वो अब शुरू हो जाए और ताकि जो दिल्ली वाले हैं या दिल्ली एनसीआर वाले हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिले गर्मी से।

मैम आपको मेरा प्यार भरा सलाम, कैसी हो? प्लीज मेरा सॉन्ग प्ले जरूर कीजिएगा, बॉर्डर मूवी का, मोहम्मद कासिम, कीरतपुर जिला बिजनौर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो चलिए अब आपकी पसंद के गाने को हम प्ले करते हैं यहाँ पर।

हाँ जी, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आ रखी हैं और ऐसे में हम क्या हैं, मजबूर, क्यों ना हो मजबूर, क्योंकि एक से बढ़कर एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है और ऐसे में किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को छोड़ें और किसे प्ले करने, थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। चलिए फिर भी एक प्यारा सा गीत अमरदीप कुमार कुप्पम पट्टी जलकंडापुरम सेलम तमिलनाडु से इन्होंने फरमाइश की है, फिर तेरी कहानी याद आएगा ये गीत। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस गीत को सुनने की और ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हैं गीत है। तो आप इंजॉय कीजिए इस गीत को और हम देखते हैं कि अगला गीत हम किसका बजाने वाले हैं। आप भी देखिए और सुनिए बहुत ध्यान से। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरे वाला सॉन्ग में अब जो सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं, भाई बारिश का माहौल हो रहा है और पर्वतों में काली घटा टकरा रही है, तो मुझे समझ में आना चाहिए या आपको समझ में आना चाहिए कि अगला गाना किस की पसंद का बजने वाला है। जी हाँ, अगला सॉन्ग जो हम प्ले करने वाले हैं वो है चांदनी फिल्म का, और किसने सॉन्ग रिक्वेस्ट ये कही है, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, इन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत

नौशाद चौधरी, अलीफिया इनकी बेटी और सन अकरम, इमराना इनकी वाइफ, राजीव नगर मंडोली दिल्ली 93 से रिक्वेस्ट करते हैं इस गाने की, जो है मेला फिल्म से।

राम जाने टाइटल सॉन्ग गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत धीरज सिंह सोलंकी सागर पंवार भानु प्रताप सिंह पंवार और समस्त राजपूताना परिवार की रिक्वेस्ट पर ये गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. मैं हूँ बबिता रावत आपके साथ, और साथ ही साथ मेरा वाला सॉन्ग में आपका है हमारा साथ और हमारा आपका साथ. मैसेजेस के द्वारा 9868107070 पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम प्ले करेंगे यहाँ पर आपके पसंद के गीत. और अभी जो गाना हम प्ले करने वाले हैं वो राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र जी की रिक्वेस्ट पर है, और उन्होंने ऐसा भी कुछ लिखा है, अजीज बर्थ एनिवर्सरी, क्या उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और एक अद्भुत सॉन्ग है ना, तो प्लीज इसे प्ले कीजिए. तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत खुदगर्ज मूवी से.

0: भाई दिन तो हमारा भी बन जाता है जब आपको हमें मैसेजेस के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपके सारे मैसेजेस पढ़े, पर क्या करें, समय का तकाजा है, सारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो सकती, पर जितनी हो सकती है हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, किसका? यहाँ पर आया है हमारे पास मैसेज सलीम जसपुर उत्तराखंड से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गाने की, जो है
1: तो जन्नत मेरी तू ही मेरा
0: रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, रब ने बना दी जोड़ी का ये गाना।

नरेंद्र सोनी देवीगढ़ से पटियाला से रिक्वेस्ट करते हैं चांदनी फिल्म के गीत का, लेकिन चांदनी का एक गाना तो हमने चला दिया है ना, चलिए आपका नाम ले लिया उसी गाने के साथ, समझ लीजिए कि आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। और वैसे यहाँ पर एक और हमारे पास मैसेज आया है, किसका मैसेज है ये, गुड्डू दाकर जी का, बेड़ावन गाँव उज्जैन जिले से बोलते हैं ये, कि दोस्तों के गाने इंजॉय करता हूँ, किसी भी दोस्त की फरमाइश पूरी होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। भाई देखिए ना कितनी अच्छी विचारधारा है इनकी, कि दूसरे की रिक्वेस्ट पूरी हो गई तो समझते हैं कि इनकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। यहाँ पर सौरभ अरनेजा जी का गाजियाबाद से मैसेज आता है, लिखते हैं, दोस्त मेरी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन आप किसी भी शो में सारे इंजॉय करते हैं शो, और देखिए इनका नाम भी आ गया। आप देखिए ना कितने लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम दूसरों की खुशी

0: में खुश है। तो चलिए सबकी खुशी में खुश हुआ जाए, अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद अब देखते हैं किसकी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी होती है।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मंगल भवन मंगलहारी।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
9: आज की रात मजा,
8: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मेरा वाला सॉन्ग में अब फिर से चलने वाली है सावन की कहानी। जी हाँ, सावन के झूलों ने मुझको भुलाया झुलाया और मैं परदेसी घर वापस आया। बहुत सारे घर ऐसे ही बुला रहे हैं अपने परदेसी लोगों को और अपने घर पर मोहम्मद अजीज की आवाज में। किस फिल्म का गाना है ये? ये है निगाहें फिल्म का गाना। किसने रिक्वेस्ट की है? राजेश कुमार चौहान जालंधर से इन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब देखिए इनकी पसंद का गीत हम चला रहे हैं, तो प्लीज प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास निम्बाराम गोदार बिरलो का नागौर राजस्थान से लिखते हैं कि बिना बरसात के हमें ये गाने अच्छे नहीं लग रहे हैं। बरसात भेजो, नहीं तो हमारी फसलें जल रही हैं और हम मर रहे हैं। देखिए कोशिश तो हमारी ये रहेगी, क्या पता इन गीतों के ही सहारे वहां पर भी पानी बरस जाए। और कभी कभी होता ना कि गीत ऐसे राग लगाए जाते हैं जिसकी वजह से बारिश भी होने लगती है। तो चलिए सुनिए इन गीतों को, इंजॉय कीजिए और ईश्वर से हमारी यही कामना है कि इस बार धरती कहीं भी सूखी ना रहे, हर कहीं जो हरी हरी फसलें हैं वो लहलहाएं और खूबसूरत हरियाली पूरी धरती पर बिखरे।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है।

0: ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो का ये वाला जो सॉन्ग मैं बजाने वाली हूँ, मेरा वाला सॉन्ग में लास्ट सॉन्ग है। और सॉन्ग रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ये किशन वंजानी, नीलम, किशु, स्वाति, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से इनकी रिक्वेस्ट आई है बाजीगर गीत के लिए। लेकिन अगले प्रोग्राम की जानकारी भी मैं आपको देती चलूं। एसएम शाहिद होंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में प्रेजेंटर, और साथ ही साथ आशियाना प्रोग्राम में अ स्पेशल इंटरव्यू विद के टंडन, फॉर्मर अनाउंसर, AIR जर्नलिस्ट एंड फिल्म पर्सनालिटी। इनके साथ जुड़िए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: वन टू पॉइंट सिक्स ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना में। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, आकाशवाणी से उनका नाता बड़ा गहरा, बहुत पुराना और बेहद खास रहा है। 22 साल तक इन्होंने आकाशवाणी में अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दी और उसके बाद 13 साल तक यूके लंदन में जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर के तौर पर बीबीसी हिंदी सर्विसेज में काम किया। उसके बाद यूके में ही अपनी थिएटर कंपनी थिएटर ग्रुप फॉर्म किया और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी और गुजराती में कितने ही प्लेज लिखे, एक्ट भी किया और डायरेक्ट भी किए। इतना ही नहीं, इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। हाल ही में एक वेब सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। इंटरनेशनल फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया। दो किताबें उर्दू गजल की भी लिख चुके हैं और इसी साल अपनी मेमोयर ऑटोबायोग्राफी चेजिंग केओस भी रिलीज कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर स्पेशल गेस्ट। प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड डायनेमिक राइटर एक्टर डायरेक्टर श्री के टंडन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सामाइन, आपने मुझे यहां बुलाया। शाहिद साहब, मैं बहुत ही तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने अपना समय निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला और चूंकि आप आकाशवाणी से ही जुड़े रहे हैं, आपके करियर की शुरुआत आकाशवाणी से हुई, तो वापसी मैं ये जानना चाहूंगा शुरुआत करते ही कि कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
2: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग आ रही है। मैं अपने एक मित्र जो यहाँ तशरीफ फरमाए उनसे बोल रहा था कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। शायद ये किसी भी चीज की शुरुआत अगर मैं करता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सा, जैसे बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज चलने लगते हैं।
1: जी,
2: और ये मेरी कर्मभूमि रही है 22-23 साल और इसे मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि मुझे आपने एक बार फिर मौका दिया है यहाँ आकर अपने सामने से बात करने का।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और आपकी आवाज, आपका अंदाज वही बताता है कि जो हम भी सबको बताते हैं कि एज ए ब्रॉडकास्टर आपका जो अंदाज है वो वही है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ पहचान बनता है हमारे आकाशवाणी के साथ। तो सर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और एक गाना प्ले करेंगे, उसके बाद आकर के आपसे बातचीत का सिलसिला करेंगे शुरू। 102.6 आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन, आपका अपना रेडियो रेनबो। शाहिद आपके साथ और आज के आशियाना में हमारे खास मेहमान हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के टंडन, जो बॉलीवुड टीवी रेडियो जर्नलिस्ट आर्टिस्ट राइटर डायरेक्टर मल्टी टैलेंटेड शख्सियत। आज हमारे साथ आप बने रहे हमारे साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना और आज के आशियाना में हमारे बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद आपका।
0: सर हमने जैसे शुरुआत करी हमने बताया कि आपका करियर 22 साल आपने दिए हैं आकाशवाणी को एज एन अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट। उसके बाद तो फिर आपका जो सफर शुरू हुआ है तो वो फिर आगे बढ़ता चला गया और बुलंदियों को मंजिलों को नई नई और ऊंचाइयों को हासिल करता गया। तो ये सफर कैसा रहा सर?
1: ये सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखा। और यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मेरा ये सफर लचीला भी रहा, टफ भी रहा, आसान भी रहा
0: जी,
1: लेकिन अगर जो कुछ भी मैंने आज किया वो आकाशवाणी की वजह से है।
0: वाह।
1: जो कुछ भी आज मैं हूं, जो थोड़ा बहुत कुछ लिखता हूं या बोलता हूं
0: जी,
1: ये सब इस आकाशवाणी की देन है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल भी अपने आप को हटा नहीं सकता
0: जी।
1: और मैं हर पल हर दम इस चीज को याद रखता हूं कि मैं कभी आकाशवाणी में काम क्या करता था
0: जी। तो 22 साल का इतना लंबा समय जो आपका गुजरा, तो सर कुछ यादें भी रही होंगी?
1: जी हाँ, बहुत यादें हैं। और ये यादें जो आपने अभी जिक्र किया मेरी ऑटोबायोग्राफी में
0: जी,
1: उसमें बिल्कुल बहुत ही तफसील से हैं।
0: अच्छा
1: समझाऊंगा। और क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा चैप्टर है मेरी जिंदगी का
0: जी,
1: तो उसको तो मैं

0: इग्नोर कर ही नहीं सकता था। और वो कुछ सफर जैसे युवावाणी ज्वाइन किया 72 में, फेल हो गए ऑडिशन में,
1: अच्छा
0: फिर पास हुए, फिर आगे बढ़ते रहे, फिर ESD एक्सटर्नल सर्विसेज ज्वाइन किया, ड्रामा अनाउंसमेंट, फिर दिल्ली स्टेशन, फिर विविध भारती। आप मानेंगे नहीं, रोज सुबह इन जनरल मैं आमतौर पर जब उठता हूं तो अब तो खैर रेडियो मैं सुनता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यूके में ये रेडियो नहीं आता, वहां का रेडियो सुनना इज लाइक मेरे लिए कुछ अजीब सी बात है, मतलब मुझे अजीब सा लगता है, वेरी लाउड। तो मैं रोज सुबह ये जरूर बोलता हूँ, ये आकाशवाणी दिल्ली है, मीडियम वेव 219 किलोमीटर, 1368 किलोहर्ट्ज़ पर, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या बात?
0: तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रवां कर रहा हूं
1: जी,
0: कि शायद मुझे कभी मौका मिल जाए फिर करने का। तो ये मेरा हाल है, आप सोच सकते हैं
1: जी। और सर, जैसे आपने अभी वो इंट्रो दिया न्यूज वाला, तो वो आपको फिर से वो मौका मिला और आप वो कह पाए आज हमारे इस लाइव शो में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसे मैं छोड़ नहीं सकता था
1: जी। तो सर, आपकी इतनी ज्यादा जो है, मतलब जैसे मैंने कहा कि मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी आपकी, आपने मतलब एज ए ब्रॉडकास्टर शुरुआत करी और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले गए, फिर आपने ड्रामा सेक्शन में काम किया काफी लंबे समय, और फिर आप सीधे गए यूके
0: जी,
1: और आप लंदन पहुंचे और इतना लंबा आपने समय दिया बीबीसी हिंदी सर्विसेज को, 13 साल
0: जी।
1: तो वो सर कैसा था एक्सपीरियंस?
0: वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं तो बिल्कुल ही आकाशवाणी से मुख्तलिफ था।
1: अच्छा,
0: क्योंकि यहां पर हम लोग क्रिएटिव थे
1: जी,
0: स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपने ढंग से, रिकॉर्ड ला रहे हैं अपने ढंग से, उसको बजा रहे हैं, उसको क्यू कर रहे हैं
1: जी,
0: तो शायद वो सिस्टम नहीं
1: है बिल्कुल।
0: तो वो एक बहुत ही, जिसे बोलते ना हम लोग, हमें लगता था कि हम बहुत उम्दा काम कर रहे हैं
1: जी,
0: इधर टेप चल रही है, कोई हेडफोन नहीं, कोई कुछ नहीं, इधर रिकॉर्ड चल रहे हैं, उसको क्यू कर रहे हैं
1: जी,
0: फिर इतने में अनाउंसर जी न्यूज रीडर आ गए। तो ये जो हमारी क्रिएटिविटी थी ना
1: जी,
0: हमें लाइव रखती थी। वहां ये सब नहीं था, वहां बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं और आप हैं।
1: अच्छा, मतलब
0: सब कुछ तैयार टेबल पर,
1: अच्छा
0: कंट्रोल है, माइक आपके हाथ में
1: जी,
0: और हम क्यू ऐसे मिल रहा है, रेड लाइट आ रही है और हम लोग बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो वहां मुझे थोड़ा सा, देखिए बीबीसी ज्वाइन करना हर एक का सपना होता है अगर आप ब्रॉडकास्टर हैं,
1: बिल्कुल जी।
0: तो आपकी, जैसे बोलते हम, जैसे थिएटर के लोग हैं जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज आर लास्ट एम
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: इसी तरह ब्रॉडकास्टर के लिए बीबीसी। और बीबीसी की अहमियत मेरी जिंदगी में तब आई जब इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ
1: जी,
0: क्योंकि उस दिन मैं अनाउंसर था ड्यूटी पर
1: ओके,
0: और हमें टोन डाउन करने को बोला, तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा क्यों भाई, और देयर वाज नो न्यूज, कोई खबर नहीं थी कि क्या हो गया है देश में
1: जी।
0: जब शाम को पता लगा तो पता लगा बीबीसी ने ये न्यूज जारी की है कि ऐसा ऐसा हो गया
1: जी।
0: वहां से एक अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी आई कि यार ये बीबीसी क्या है, हम लोग खामोश हैं
1: जी,
0: और बीबीसी ने दुनिया भर में खबर दे दी कि ऐसा हो गया, बस वहां से शुरू हो गया। कभी पूरा मतलब नहीं पता था बीबीसी का
1: जी,
0: बीबीसी क्या है
1: जी,
0: लेकिन ये सोचते थे कि इनके जो रिपोर्टर्स हैं क्या वो दुनिया के कोने कोने में बसे हैं, कहीं छिपे हुए हैं, जैसे एक होता ना एक्साइटमेंट से
1: जी,
0: कि जैसे कण कण में बसे हुए हैं और हमें देख रहे हैं कहां क्या हो रहा। तो दैट वाज द थिंग।
1: ओके सर, आपने फिर उसके साथ साथ वहां पर अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर कंपनी भी स्टार्ट कर दी, लॉन्च कर दी, उसमें आपने प्लेज लिखे भी हैं, उनको डायरेक्ट भी किया है और उनमें एक्ट भी किया, और वो भी बड़ा लंबा आपका वो जर्नी रहा, तो वो किस तरीके का रहा और क्या अभी भी वो एस्टैब्लिश्ड है, अभी भी चल रहा है थिएटर?
0: हाँ, मेरी थिएटर कंपनी अभी भी चल रही है, लेकिन अफसोस ये है कि कोविड के बाद थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम लोग वहां पे यूके में एक आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो हम लोग साल में 2 प्ले किया करते थे एक साल में, जिसके लिए यूके गवर्नमेंट ग्रांट देती थी।
1: ओके,
0: जैसे फिल्म कमीशन हो गया और लोकल काउंसिल्स हो गई, कभी 10,000 पाउंड सालाना, कभी 15,000 पाउंड सालाना। तो अब वो कोविड के बाद बिल्कुल खत्म हो गया है।
1: अच्छा,
0: तो हम जैसे लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो एक तरह से जंग लग गया उसको।
1: तो सर, वहां जो आर्टिस्ट थे जिनके साथ आपने काम किया, क्योंकि आपने मल्टी लैंग्वेज वहां पर प्लेज किए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने पंजाबी और गुजराती में भी ब्लेज किए, तो वो आर्टिस्ट वहां पर होते हैं या आपने अपने?
0: नहीं, बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं।
1: अच्छा।
0: इस वक्त मैं आपको बताऊं, यूके में गुजराती थिएटर इज थ्राइविंग द मोस्ट।
1: अच्छा,
0: वो इतना प्रचलित है कि हम उसको छू नहीं सकते।
1: ओके,
0: हिंदी थिएटर जो है, लोग कहते हैं कि छोड़ो यार फिल्म देख लेते ना, हिंदी थिएटर कहां जाना देख लेते, 20 पाउंड का टिकट है,
1: 20 पाउंड का,
0: हाँ, और 8 पाउंड के टिकट में उसमें अक्षय कुमार है, सैफ अली खान है जी। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जाता हूं अपने दोस्तों को बताने के लिए मेरा प्ले है, टंडन तेरा प्ले हम टिकट लेके आएंगे, पास दे देना भाभी का मेरा बच्चों का। तो यहाँ हम लोग मार खा जाते हैं।
1: जी सर, आपने बॉलीवुड का जिक्र कर दिया है बीच में, मैं चाहता था कि उसके बारे में बाद में बात करूं, लेकिन अब जब जिक्र आ गया तो

0: पूछूंगा सर, बॉलीवुड में आपने जब एंट्री की तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो क्या क्या क्या आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा या आपके पास ऑफर बैठे बिठाया आया, और मूवीज कौन कौन सी की आपने?
1: ऑफर तो खैर बैठे बैठे ही आया था
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी व्हाट आई वॉज डूइंग। 2014 की बात है, बॉम्बे के एक बहुत नामी हैं मुकेश छावड़ा
0: जी,
1: यूके में टूर कर रहे थे कास्टिंग के लिए, तो किसी ने मेरा जिक्र कर दिया कि भाई अच्छा बंदा है, अच्छा बोल लेता है थोड़ा बहुत, तो ही कॉल्ड मी।
0: अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं मुझसे होता नहीं है ऑडिशन कैसे देना है, क्या परफॉर्म करना है, बिकॉज आई वाज नॉट इनटू दैट। हालांकि यहाँ टेलीविजन में थिएटर किया, सॉरी टेलीविजन थिएटर किया मंडी हाउस
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा नहीं सर ये करेक्टर है आपको करना है एंड इट सूट्स टू यू। तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म, मेरा गला खराब है पता नहीं, वो थी शानदार,
0: ओके,
1: आलिया भट्ट,
0: आलिया भट्ट, शाहिद कपूर, ओके, पंकज कपूर,
1: वहां से जर्नी शुरू हो गई,
0: ओके,
1: ये फील बदी जिसे बोलते हैं ना, वहां से ये हो गया, तो आई नेवर लुक बैक।
0: ओके, उसके बाद फिर मल्टीपल आपके फिर ऑफर्स आते रहे, आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, बेल बॉटम में भी आपने रोल किया, और अभी हाल ही में भी आपने कुछ फिल्में की हैं।
1: जी हाल ही में मेरी 3 फिल्में मैंने पंजाबी की हैं
0: जी,
1: जो कि मैं लंदन से ट्रेवल कर रहा था इंडिया, और ये रिसेंट इज माय नेटफ्लिक्स की सीरीज तस्करी
0: जी जी जी,
1: और मैं फिर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ मुंबई, सो
0: दैट्स ये जर्नी भी जारी है
1: जी।
0: और सर इतना मैं ये अपने आप से मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा, सोच रहा था मैं जब तक आपसे बात नहीं हुई थी, इतनी सब चीजें सर आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं, इतना सब कुछ, आप राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, पोएट, और मतलब मैंने जैसे कहा, तो कैसे आप ये सब मैनेज कर रहे हैं सर, और फिर बॉलीवुड के लिए तो डेडिकेटेड टाइम देना होता है।
1: जी हाँ, लेकिन हम लोग कोई इस तरह का रोल नहीं करते कि हम लोग दिन रात उसी में लगे हुए हैं
0: जी,
1: बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए सेकेंड लाइन एक्टर
0: जी,
1: मतलब सीनियर, चाचा बन गए, ताऊ बन गए, हम लोग हीरो तो है नहीं
0: जी जी,
1: लेकिन जो मेरा मेन है जो वो है थिएटर और लिखना
0: जी,
1: लिखता रहा हूं मैं गजलें आकाशवाणी के टाइम से,
0: अच्छा,
1: लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहां उन्हें शाया करवाने का।
0: लेकिन आपने सर उसको पब्लिश किया और बाकायदा रिलीज हुई है बुक
1: जी फेर। जी, तो ये अंग्रेजी जो मेरी बुक है, मेरी जो बायोग्राफी है, इस पर मैंने 5 साल काम किया है,
0: ओके,
1: ड्यूरिंग ऑल माय ट्रिप टू इंडिया एंड एवरीवेयर, क्योंकि ये मेरा एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा लेगेसी देके जाऊं जो मेरे बारे में जाने, वो वहां के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उनको कुछ नहीं मालूम
0: जी,
1: सो दिस आई ब्रॉट इन द मार्केट जस्ट फॉर देम
0: जी। और सर इसके अलावा एक और भी चीज है जो मैंने आपके बारे में ढूंढ करके निकाली, बहुत कम लोग जानते होंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं बताऊंगा वो इस खूबसूरत गाने के बाद। मोहम्मद रफी का ये गाना है, मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं और वापस आता हूं और आपसे बातचीत जारी करता हूं। आप सुन रहे हैं आशियाना शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।
6: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचें जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
7: 102.6। ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं के टंडन साहब, जो जिनका सफर शुरू हुआ था आकाशवाणी से ही। वो एक बहुत ही मशहूर अनाउंसर रहे हैं, ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर रहे हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर, एक्टर, और दो पोएट्री की, गजल की, शायरी की किताबें भी लिख चुके हैं, और बॉलीवुड के अलावा वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आकाशवाणी के उसी प्रांगण में जहां से आप गुजर करके गए।
8: थैंक यू, धन्यवाद।
7: सर, हम बातचीत कर रहे थे आपका, मैंने बॉलीवुड के सफर की बात करी, बहुत सारी फिल्में आपने की और अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपने जब पहली बार कैमरा फेस किया, वो हम जानना चाहेंगे, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा दौर था?
8: वो दौर था, आपको याद होगा, एक फिल्म बन रही थी गांधी
7: जी, बहुत ही फेमस हॉलीवुड प्रोजेक्ट था वो।
8: तो उस वक्त कोई ऐसा तामझाम तो था नहीं, तो कुछ ऐसा वक्त था, मुझे शायद याद है कि हेलीकॉप्टर से कुछ पंपलेट्स एंड लीफलेट्स वगैरह थ्रो किए गए थे कि अच्छा, हमें इतना बड़ा क्राउड चाहिए।
7: ओके,
8: क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी हत्या का सीन उन्होंने
7: पिक्चराइज
8: करना था, और उससे पहले कुछ थी, तो हम तो साहब, हमें तो लगा कि हम तो स्टार बन गए। एक खास तौर पे एक ये सामने आ गया कि ओहो, मैं तो फिल्म करूंगा जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था इसके पीछे की हकीकत क्या है।
7: ओके,
8: अशोका होटल में ऑडिशंस थी, हजारों की संख्या में लोग थे,
7: और सर ये मेरे ख्याल से अर्ली 80s या
8: अर्ली 80s। और हम जब वहां पहुंचे साहब, तो कोई पूछे ना।
7: अच्छा,
8: अब के टंडन, ठीक है भाई, आकाशवाणी में छोटा मोटा नाम हो सकता है, लेकिन उस दुनिया में तो कोई नहीं जानता था। तो कोई सज्जन थे हमारे, कोई जान पहचान के निकला है, हु वाज वन ऑफ द टीम मेंबर्स। तो उन्होंने कहा, तूने तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, यार मैं इसके, कहता तू मेरे साथ चल, थोड़ा ऑडिशन दे, हमें बहुत से लोग चाहिए। मैंने कहा, क्राउड नहीं चाहिए। कहता नहीं नहीं, डायलॉग होगा
7: जी,
8: ऐसी बात नहीं। तो हम लोग लेके गए, तो उनसे बात बात हुई, तो उन्होंने कहा भी ठीक है, हम आपको बता देंगे। तो आ गया न्योता।
7: अच्छा,
8: तो उसमें पता लगा कि हम लोग शूट करेंगे, उन दिनों ओमपुरी भी थे उसमें, और छोटा सा एक डायलॉग सीन था कि हम लोग भूखे हैं
7: जी,
8: गांधी जी बैठे हुए हैं, और हम लोग उनके पास जमघट लगा के बैठे हैं कि बापू हमारा कुछ कीजिए, कुछ नहीं हो रहा, अंग्रेजों ने सब कुछ रोक दिया है, दिस एंड दैट। तो वो मेरे लिए एक पूरा बदन कांप रहा था। और ओमपुरी जी को मैं उनके NSC के दिनों से जानता था।
7: अच्छा,
8: तो वो सांत्वना देता था, टंडन घबराना यार, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं कह, यार मैं तो कभी सोचा नहीं था
7: जी।
8: तो ये हल्की सी एक छोटी सी यात्रा की शुरुआत थी।

0: सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
1: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है।

0: तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
6: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है।
8: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
7: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरु

0: जी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
2: तो हंस तुम्हारे पास है,
0: लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
0: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
2: भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
2: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा इस गधे पे बैठ कर
10: सिद्धार्थ को मिलना जिसके पास जा
9: रहा है।
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ,
4: घबराओ मत।

0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
2: महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो।
3: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ

0: पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0
2: दिन था 2 सितंबर 2023। स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
3: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
2: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
4: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
5: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
4: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
5: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
6: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
7: हम अच्छे हैं।
6: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
7: जी हम तैयार हैं।
6: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
7: आदित्य L1 के बारे में?
8: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
5: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
5: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
6: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
5: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
6: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
5: जी, मेरा नाम श्रुति है।
6: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
4: सूर्य ग्रह है या तारा?
6: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
5: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
6: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
7: अच्छा सर।
4: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
5: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
6: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
4: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
6: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
4: विशाल गैसों का गोला। अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
6: शाबाश, समझ गए ना?
7: जी सर।
5: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित

0: दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना।
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस खास फोन इन कार्यक्रम का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर विनोद कुमार यादव, जो CGS नई दिल्ली में आयुर्वेद में CMO हैं, और डॉक्टर राखी मेहता आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राखी और डॉक्टर विनोद, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार जी।
1: अगर आपके मन में भी है अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल, तो उठाइए अपना फोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर। सवाल जो है 011-2342-1080 और 011-2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर 9868-1070 पर भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन एक इस प्यारे से गाने के साथ।

0: कंडक्टर साहब, आपको ये गाना कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना है।
0: तो श्रोताओं, आपको भी गाना जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और अगर अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कीजिए ना फोन हमें। हमारा नंबर है 01123421080 और 01123421082, और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आखिर इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या?
1: देखिए, इम्यूनिटी जो है, इसको अगर सरल भाषा में हम समझे, रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व, यानी शरीर में जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं वो हम पे हमला करती हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता या उसकी रक्षक प्रणाली इस प्रकार की है कि उन व्याधियों से प्रभावित नहीं होती है और हम जीवन को पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन को जी सकते हैं पूर्ण आनंद के साथ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये दो प्रकार की होती है। जो माता से सीधे जन्म से आती है आपको, वह इम्यूनिटी होती है। जैसे कहावत होती थी कि माँ का दूध पिया है, तो वह इम्यूनिटी ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आहार विहार और जीवन शैली के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को विकसित करते हैं, उससे भी शरीर एक प्रकार की क्षमता विकसित करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है।
0: तो ये अगर कहें डॉक्टर साहब कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही एक डॉक्टर है।

0: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन की प्रसन्नता है, आपका जीवन स्वस्थ है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं, तो शरीर अपना स्वतः डॉक्टर है, वो अपनी हीलिंग खुद ही करता है और एक प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति, उसकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी रहेगी।
1: अच्छा, तो अगला सवाल डॉक्टर राखी आपसे कर ले कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी। और इम्यूनिटी को तो पहले तो समझ लें कि आयुर्वेद में क्या है।
1: हाँ,
2: है ना
1: जी जी।
2: आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल एक है। व्याधि क्षमत्व मतलब जिससे व्याधि को रोका जा सके। हाँ। और व्याधि रोग प्रति मतलब जो उत्पादक तत्व है उनको मतलब उसमें इंडल ना हो, ये वाली व्यवस्था है। ये चरक ने सोचिए आज से
1: जी
2: तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व ये एक श्लोक दिया है
1: जी।
2: अब उसका अर्थ अगर हम आज के दृष्टिकोण से देखें
1: जी,
2: तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली बेसिकली जो कहा गया है कि इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका
1: जी।
2: और वो रिस्पॉन्स भी क्या है कि उसमें मॉलिकुलर सिग्नल्स जो है वो आपको एक नेटवर्क के थ्रू ये आपको मैसेज देते हैं कि कोई भी जैसे एलर्जन आ गया, बाहर से कोई फॉरेन कंटेंट आ गए, या फिर आपको कोई पैथोजेंस है जैसे वायरस है, बैक्टीरियाज है आपके इन, और इसके अलावा जो अनवांटेड सेल्स हैं जैसे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जैसे कैंसर की सेल है, इन सब से लड़ने के लिए किस तरह से बॉडी जो है वो एक पूरी मतलब एक डिफेंस अपनी बनाती है। और उसमें सेलुलर लेवल पे भी है तो वो फिजिकल भी है, केमिकल। अब जैसे आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है, हाँ। तो फिजिकल में आपकी स्किन है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट चीजें हैं, फिर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है,
1: हाँ।
2: जिसके अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं, तो केमिकली जो अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा
1: जी।
2: अच्छा, आंखों से आंसू निकलते,
1: हाँ,
2: ये भी एक है ना,
1: हाँ।
2: तो देखिए भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी हुई है, उसमें कुछ सेल्स हैं,
1: हाँ।
2: जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस हैं,
1: हाँ।
2: है ना, एक एनके होता है जो नेचुरल किलर होती हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: और एक ये मतलब ये सारी इम्यूनिटी के साथ में आपको एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये जो है ये सारी इननेट है, मतलब हमें खुद दी गई है प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी में ये सब चीजें डाली हुई हैं। और इसी को अगर हम एडॉप्ट कर लें, एडॉप्ट मतलब क्या हुआ कि कुछ जो हम फाइट कर लेंगे और फाइट करने के बाद यदि हम फाइट नहीं कर पाते तो मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि ऐसी चीजों को जो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी खुद की है या बाहर से आई हुई है जो हम पे अटैक करने वाली है हमारी सेहत पे, उनसे बचने के लिए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस व्याधि क्षमत्व जो व्याधि का जो रोग का प्रादुर्भाव है वो ना हो पाए, और व्याधि हो गई हो तो उसको कैसे रोकें। ये इननेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी आयुर्वेद में चरक ने कितने दिन मतलब कितने सालों पहले कही थी,
1: हाँ।
2: तो आपने कहा कि आयुर्वेद में उसके क्या है, तो उपाय तो बहुत हैं, अभी हम बताते चलेंगे,
1: हाँ।
2: लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी जो मैंने ये समझाने की कोशिश किया उससे ये समझ में आना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञात थी। अब हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इससे कहते हैं धातुएं। धातुएं मतलब जिससे हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये धातुएं हैं,
1: हाँ।
2: अब ये धातुओं में कौन से, इन सब का निचोड़ एक ले लो, ओज,
1: हाँ।
2: ओज बोलते हैं, हाँ, ना, हाँ। कि आपका ओज कम लग रहा है,
1: हाँ।
2: मतलब आपकी वाइटैलिटी,
1: हाँ।
2: ओवरऑल जो आपको एक जूस की जो जरूरत है,
1: हाँ।
2: वो अब आपका कम लग रहा है,
1: हाँ, हाँ।
2: आप बुझे बुझे से लग रहे हो,
1: हाँ।
2: तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है,
1: हाँ।
2: कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। मैं बहुत साधारण भाषा में बताने, हाँ। की कोशिश कर रही हूँ,
1: हाँ।
2: ताकि ये लोग समझे कि हमारे अंदर कुछ सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों को हम मजबूत कैसे दें, इसीलिए ही आयुर्वेद की जीवन शैली। इसीलिए

0: आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये जो कहा गया है इन सब के साइंटिफिक रीजन है, हम एक के बाद एक लेते चलते हैं।
1: हाँ, तो डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये ओज या ओजस ये कॉन्सेप्ट क्या है।
2: देखिए, ओज या ओजस ये वैसे हृदय में अष्टबिंदुवात्मक की इस मात्रा में रहता है
1: जी।
2: लेकिन जैसे मैडम ने बताया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु, ये उत्तरोत्तर हमारे आहार जो हम खाना खाते हैं वो कितना पौष्टिक है। हाँ। उससे जो रस धातु यानी उससे जो आहार रस मिलता है
1: जी,
2: वो धीरे धीरे एक एक धातु की पुष्टि करता है।
1: हाँ।
2: और जैसे जैसे पुष्टि करता है तो अंतिम धातु जो शुक्र धातु बनती है उसके बाद एक फाइनेस्ट मटेरियल बनता है ओज धातु, जिसका स्थान हृदय में है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
2: जो आपकी शारीरिक क्षमता, व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म को बूस्ट करना
1: जी, जी।
2: तो वो ओज धातु से प्रतीत होता है
1: जी, जी।
2: और आपके स्वास्थ्य का ये पैमाना भी अच्छा बताता है।
1: अच्छा।
2: तो ओज धातु का बड़ा महत्व है।
1: हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है
2: जी जी।
1: ये पूछना चाह रहे हैं कि लंदन का इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या महत्व है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से
2: जी। देखिए, लंघन में जो हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं
1: जी,
2: जैसे कि आप लंघन क्यों कराते हैं, लंघनम आदव चिकित्सा यानी पूरी चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब पहला पांव है वो है लंघन कराना।
1: अच्छा।
2: तो लंघन क्यों कराएंगे, जब शरीर में दोषों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, आम दोष की अवस्था होगी तो देखिए, बिना किसी औषध के आप शरीर के दोषों का पाचन कराने के लिए लंघन करा दीजिए। लंघन 3 से 7 दिन तक आप करा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: लंघन में जैसे हम लोग सुखोष्ण जल, उष्ण जल में रखते हैं, ठीक है, कि कुछ नहीं करिए, केवल पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी पीजिए, धीरे धीरे आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर शरीर के जितने कचड़े को है वो पाचन करा देगी
1: जी।
2: और अग्नि उद्दीप्ति होने के बाद आपकी पूरी शरीर की फैक्ट्री एकदम से चलने लग जाएगी
1: जी, जी।
2: तो इसलिए लंघन कराने से आपको सबसे बेसिक लाभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास किए व्रत की प्रथा चालू की गई कि लोग जो रूटीन में खा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन व्रत में उनके मन की स्थिति भी अच्छी होगी, शरीर की भी स्थिति होगी, तो लंघन उसका इस रूप में आप समझ सकती हैं
1: जी, जी।
2: तो लंघन कराने से बहुत फायदा होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और इन सब के मूल में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए
1: जी। तो ये इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर राखी आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने जो बताया कि ये लंघन की प्रक्रिया और पानी का इसमें बहुत महत्व होता है
3: जी जी।
1: तो पानी को लेकर ऐसा है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए?
0: देखिए, ये सब जो है ये अपनी सबसे पहले प्रकृति जाननी जरूरी है कि आप कौन से प्रकृति के हैं।
1: हाँ।
0: यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दोषों का क्या बैलेंस है
1: जी।
0: तो उसमें हमारे वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है या संयुक्त है या दो दोष ज्यादा है, तो ये जानने के लिए आप किसी निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण करा लीजिए। उसमें साफ ये बता देंगे कि क्या खाना क्या ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, क्या करना क्या ना करना आपके लिए बेहतर होगा। आपने कहा था कि जैसे ये लंघन बेसिकली क्या है कि एक जो गट्स है ना हमारे, जो अगर मॉडर्न साइंस से भी देखिए तो गट के जो इंटेस्टाइन है, मतलब गट में जो हमारे मेसेंट्रिक्स जो नोट्स हैं, साथ में प्रेयर्स हमारी जो वो है नोट्स, इन सब में आपके जो है वो जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स जरूरी हैं वो वहां पे हैं। अब वो कैसे खराब हो रही हैं कि आपने खाना में कोई अपने कंट्रोल किया नहीं, जो पचा नहीं फिर खा लिया, तो हमारे यहां सब लिखा है कि बिना खाया मतलब अनशन, अति मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, और अध्य मतलब जब पहले वाला पचा नहीं और फिर खा लिया। तो ये सबसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब हमारे यहाँ अगर अनपचा हुआ खाना रखा
1: जी,
0: तो उसको कहते हैं आम। आम ये मैंगोज नहीं, आम मतलब अपको, जो मतलब जो अभी मेटाबोलाइज नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है और रस धातु रक्त धातु में नहीं हुआ है
1: जी।
0: अब आपने कहा कि लंघन, तो लंघन देखिए मतलब आपने अपने शरीर को खाने से वंचित रख रहे हैं, उसका

0: अलग अलग पैटर्न है
1: जी।
0: कितना रखना है, एक बार रखना है, दो बार रखना है, हाँ। तीन बार और रखना
1: जी।
0: कि केवल अन्न त्यागना या केवल पानी पे रहना है या दोनों ही त्यागना, ये सब आपकी बॉडी के जो टेम्परमेंट है और आपकी स्थिति जो है उसको चिकित्सक परीक्षण करके लंघन कराता है।
1: अच्छा,
0: ये जो नॉर्मल उपवास आपने आज रख लिया और कुट्टू की रोटियां खा ली और ये कर लिया, तो ये लंघन नहीं है।
1: अच्छा,
0: लंघन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो आम पाचन के लिए किसी भी पंचकर्म के पहले कराया जाता है।
1: अच्छा,
0: पंचकर्म क्या है? शरीर की शोधन की एक प्रक्रिया है
1: जी। पंचकर्म पर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे
0: नहीं, पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि रस धातु में अगर आम है तो वो रक्त नहीं बना रहा।
1: अच्छा,
0: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका सीआरपी बढ़ गया, आपका जो है इंटरफेरॉन, मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए
1: जी।
0: तो आम जो है वो

0: अच्छा अच्छा
1: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपका सीआरपी बढ़ गया आपका जो है इंटरफेरॉन मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए तो आम जो है वो सब स्रोतों अवरोध करता है हमारे स्रोत के अच्छा, जिसके चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है फाइन टिश्यूज जो है हमारे जो रस जिनको वो ले करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं डेवलप करते हैं वो नहीं हो रहा अच्छा। तो वो रुक ये सुनिए आपको लग रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज है बॉडी का उसको ब्लॉक कर देंगे अच्छा। तो सर्कुलेशन वहां तक कैसे पहुंचेगा ये तो सबको मालूम है
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: नंब हो जाएगा हाँ, है ना हाँ, हाँ, तो आप उस चीज को समझिए कि जो पोषक तत्व जहां तक पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच रहे तो अवरोध हो गया तो अवरोध हो गया उस आम को हटाने के लिए लंगन श्रेष्ठ उपाय है लेकिन चिकित्सक के निगरानी में अब आपने पूछा कि पानी कैसे है
0: जी।
1: तो पानी का भी वही है मैं एक गिलास पीती हूँ आप दो गिलास पीते हैं आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट क्या है 70% जो है वो बॉडी वाटर मांगती है अगर वो हट रहे तो आपके वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है जिसके कारण आप स्वस्थ हो जरा भी आप देख लीजिए सोडियम बढ़ा दीजिए या कैल्शियम ये पोटेशियम बढ़ा दीजिए या तो आपके सेल्स के ऑस्मोसिस है ना वो सब आपकी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी
0: अच्छा।
1: और इसीलिए कहा गया है कि पानी जितनी भी सेल्स में क्योंकि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इतनी पतली है कि उसमें जली उससे ही ये आर पार हो सकते हैं
0: जी,
1: और इसी से सिक्रीशंस ब्लड जो है हाँ, वो आपको पोषण सारी बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है
0: अच्छा,
1: तो उसको लिक्विड रहना कितना बहुत पतला भी खून ठीक नहीं है
0: हाँ,
1: बहुत गाढ़ा भी नहीं है मालूम है ना
0: जी, जी, जी,
1: तो उसी तरह पानी पीने की व्यवस्था है
0: अच्छा,
1: ये गलत फहमी है लोगों को कि गर्म पानी पियो कि ठंडा पानी पियो कि फला कियो कि खाने के पहले पियो कि खाने के ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे हैं कि खाने के बाद किस प्रकृति वाले को पीना चाहिए और खाने के पहले किस प्रकृति वाले
0: हाँ,
1: को
0: तो,
1: और कितना पीना चाहिए लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि 8 से 10 ग्लास
0: हाँ, हाँ,
1: एक बार में पानी पीना चाहिए लेकिन एक इकट्ठे नहीं पीने चाहिए सिप सिप सिप करके पीना चाहिए ताकि जो जो उसका पर्पस है ना कि बहाना रसाना वो चलता रहे।
0: अच्छा तो डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं ये यशपाल शर्मा हैं जो द्वारका दिल्ली से हैं इनका पूछना है कि हाउ हाइजीन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी पीपल हु आर वेरी पुअर एंड लिविंग रोड साइड एंड नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्यूनिटी हाउ इट इज पॉसिबल ये संभव कैसे है कि जो रोड मतलब सड़क के किनारे जो रह रहे हैं जो गरीब लोग हैं तो उनमें इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है या
1: बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि देखिए जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है वो फाइट कर लेते हैं
0: जी जी
1: देखिए इम्यूनिटी केवल एक स्किन के थ्रू नहीं आ रही है स्किन में जो बैरियर है जो फिजिकल बैरियर है और स्किन में ही जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके बाहर से आने वाले बैक्टीरिया पैथोजेंस है केमिकल्स है आपके जो फॉरेन बॉडीज है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको रोकते हैं
0: जी जी
1: लेकिन गट मैंने कहा ना गट में 70% जो है वो इम्यूनिटी के सेल्स हैं
0: जी
1: तो वो जो जो जिनको रोड में जिनको साबुन नहीं है अपने शरीर धोने का तो उनको खाना भी उतना ही है
0: हाँ
1: वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खा रहे हैं
0: जी जी
1: ये बात अलग है कि उनको माल न्यूट्रिशन है तो विटामिन सी डी जो हमें जरूरत है
0: हाँ, हाँ,
1: है जी,
0: जी, जी, जी
1: ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी विटामिन डी मतलब डी की कमी है
0: हाँ,
1: वो अलग इशू है
0: हाँ, हाँ,
1: कि भाई वो माल न्यूट्रिएंट है
0: हाँ,
1: उनकी मैकेनिज्म भी स्लो हो जाएगी
0: हाँ, हाँ,
1: आज नहीं कल लेकिन जहां तक ये स्वच्छता की बात है
0: जी जी
1: टू मच हाइजीन मैं आपको बता दूं कई लोग दिन भर अपने हाथ डिटॉल से धोते रहते हैं
0: हाँ, तो यही इनका पूछना
1: ये आपको मैं बता दूं दिस इज अनदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो आपका हाथ को जरूरत नहीं है फिर भी आप धो रहे हो लेकिन जब जरूरत है तब नहीं धो रहे हो तो स्वच्छता कहाँ कब कैसे करनी है देखिए हर चीज का एक साइंस है टू मच हमारे यहाँ कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य और बिल्कुल बिल्कुल भी वर्ज्य है ना तो और उल्टा सीधा और भी वर्ज्य
0: हाँ, हाँ।
1: तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल कहा है कि समदोष समाग्नि हर चीज सम

0: एक कोई बुलेरम में रखिए
1: हाँ।
0: तो प्रसन्न आत्मा भी रहे, मन भी रहे, इंद्रिय भी रहे और आप भी स्वस्थ हो
1: जी। डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद में टर्म है ऋतुचर्या
2: जी, जी।
1: तो ये ऋतुचर्या क्या होती है, हमें कैसे पालन करना चाहिए और ये हमारे इम्यूनिटी में कितना प्रभाव डालती है?
2: देखिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तन ठीक है, ये एक ऋतु जैसे हमारे 12 महीनों में हमारी 4 ऋतुएं हैं, वैसे आयुर्वेद में षड ऋतु मानते हैं, 6 ऋतुएं मानते हैं पर ज्यादातर 4 ऋतुओं में हम समाहित करते हैं प्रभावों को। इन ऋतुओं में जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ शरीर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए ठीक है, प्राकृतिक रूप से उसकी जानकारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो आयुर्वेद में दी है वो इतनी बेहतरीन है, वो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन पे ही बात नहीं करती है, वो आपके आहार पे बात करती है, आपकी लाइफस्टाइल पे बात करती है, इन सब चीजों में किस तरह क्रामिक परिवर्तन करें। जैसे मान लीजिए इस समय हम एक ऋतु की चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु की, अब वर्षा ऋतु के लक्षण कैसे आएंगे, देखिए वर्षा ऋतु में हमारा अग्निमान हो जाएगा, यानी अभी अगर आप पेशेंट से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनमें लक्षण आ रहा है कि भूख नहीं लग रही है
1: जी, जी।
2: पहला लक्षण इसका मतलब अग्निमान हो गया
1: जी।
2: दूसरा वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है या लूज मोशंस हो रहे हैं या घबराहट हो रही है
1: जी, जी।
2: ये सारे लक्षण प्रकृति में किन कारणों से आए, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इन सब से मिला जुला होने की वजह से आप में परिवर्तन आए। अब आपको क्या करना है, आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें, खाना शरीर को कम दें तो हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा। जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं जिसमें लूज मोशन होना वोमिटिंग होना इन सब में कमी आ जाएगी
1: जी।
2: तो बिना कोई दवाई के यदि आपने इतना परिवर्तन कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर क्या खाना नहीं है, कोई जैसे कि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है
1: जी।
2: तो वात के प्रकोप से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे एक है जल में घुले सत्तू को वर्षा ऋतु में निषेध कहा है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि ये वायु का प्रकोप करके पेट में फुला देता है
1: जी।
2: तो इससे हमें दिक्कत होती है, तो ऐसे आहार में तमाम ऐसी चीजें अगर जैसे गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी भारी भोजन हाँ। यानी वह भोजन जो पचने में बहुत समय लगाता हो, जैसे पनीर है, तमाम आपकी मिठाइयां हैं, इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें
1: हाँ।
2: ये सब चीजें हमें बिल्कुल कम करना चाहिए, हल्का सुपाच्य जैसे खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, हरी सब्जियां आ रही हैं उनको खाएं, पत्तेदार सब्जियों को रहने दें, क्यों वर्षा ऋतु में पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं
1: हाँ हाँ।
2: तो उसकी वजह से हमको नुकसान ना हो तो पत्तेदार सब्जियों को हम निषेध करते हैं कि उनको मना करते हैं, और ऋतुजन्य फल
1: हाँ।
2: और ऋतुजन्य सब्जियों का सेवन करें, उसी तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अब सुन लेते हैं एक गाना
2: हाँ,
0: बिल्कुल ऋतु अनुसार
1: ऋतु अनुसार

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ।

0: और मैं अजीत, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
1: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें

0: प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
6: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा, तो वो कितने प्रसन्न होंगे।

0: तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
0: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
0: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
0: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: ये हंस कैसे बताएगा?
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ।

0: घबराओ मत।
1: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
3: महाराज की जय हो।
4: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य

0: यह पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0
2: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
3: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
2: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
4: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
5: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
4: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
5: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
6: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
7: हम अच्छे हैं।
6: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत, आप तैयार हैं?
7: जी हम तैयार हैं।
6: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
7: आदित्य L1 के बारे में?
8: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
5: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
4: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
6: बहुत अच्छे, चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
5: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
6: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
5: जी मेरा नाम श्रुति है।
6: शाबाश श्रुति, तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
4: सूर्य ग्रह है या तारा?
6: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
5: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
6: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
7: अच्छा सर।
4: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
5: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
6: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती, सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
4: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
6: हाँ सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
5: विशाल गैसों का गोला?
4: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
6: शाबाश, समझ गए ना?
7: जी सर।
5: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
6: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता।

0: एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना।
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: सुनते प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: एडी शेष करुचु सुरीला आफ्टरनून को वर्तमान समय संध्या पांचटा हेबाक जाउछि चलंतु सुनिबा न्यूज हेडलाइंस
1: नमस्कार श्रोता बंधु अपराह्न पांचटा एफएम न्यूज हेडलाइन सहित मु आदित्य नारायण दास आपणमानंकु स्वागत करुछि। राज्यरे बृहत आलुमिनियम प्रकल्प प्रतिष्ठा पई मुख्यमंत्रीको उपस्थितिरे 1,10,000 कोटी टंकार बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। आजिठारु आरंभ होईछि मैट्रिक सप्लीमेंटरी राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा। आगामी विश्व प्रसिद्ध रथयात्राकु सुचारू रूपे संपन्न करिबा लक्ष्य नै समन्वय बैठक अनुष्ठित। क्रीडा सांबादिकतार गुरुत्व संपर्कें सचेतनता सृष्टि उद्देश्यरे आज पालन कराउछि विश्व क्रीडा सांबादिक दिवस। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज दुईदिनिया दिल्ली गस्तर राज्य में चलित आर्थिक वर्षर प्रथम पर्याय पोषण अभियान ओजन उत्सव आरंभ। गंजाम जिलार भिभीजी रामजी योजनार शुभारंभ हो। नूआदिल्ली में आयोजित भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जोगदे उभय देशर प्रधानमंत्री। विभिन्न क्षेत्र पर स्वाक्षरित बुझामणा पत्र। देशव्यापी कार्यकारी है कर्मचारी भविष्यनिधि पांठि योजना 2026। बेंगलुरु एक पथर खणि दुर्घटना 7 श्रमिकों मृत्यु। युक्रेन कीव अंचल रुषिया आकाशमार्ग आक्रमण में प्राण हर 13 जन। राजस्थान जयपुर चलता जातीय ई गवर्नेंस सम्मेलनी आज उद्यापित। बंगोपसागर सक्रिय घूर्णी बलय आसंता

0: रहिली नमस्कार
1: धन्यवाद
0: ओके वेलकम तो ये कृपा सिंधु कवि भुवनेश्वर रु एवं से कौन कौन सब गच्छ लगे से संपर्क कहले आ गच्छ केते दिन रे फल दबो बा बड़ हबो से संपर्क रे भी बहुत कथा कहले तबे देखनबा आग को किए करछन कॉल हेलो नमस्कार
2: मैडम नमस्कार
0: नमस्कार किए कहछन कोठ कहछन
2: बुल्लु पटनायक आनंदपुर केन्दुझर
0: केमती अछन भाई
2: हाँ गोटे प्रकार भल
0: गोटे प्रकार कहीं कौन कि
2: अंटा अपरेसन छोटे छोटे
0: अच्छा अच्छा अच्छा किसी ना निजर जत्न निमें महाप्रभु को प्रार्थना कर खुब शीघ्र भल हो जातु आप
2: धन्यवाद
0: ठीक अच्छे आज टॉपिक कौन कह
2: बर्तमान समय आप भल टॉपिक टे रखी तेणु आप धन्यवाद जनाऊँ बर्तमान वृक्षरोपण सप्ताह पालन करा
0: आउ
2: प्रति वर्ष जुलाई मास एक तारीख रु सात तारीख पर्यंत वृक्षरोपण सप्ताह पालन करा जाय थाय
0: आउ
2: वर्तमान मध्य से सप्ताह चली वृक्षरोपण सप्ताह चालू बा न चालू मु वर्ष सारा गच्छ लगे थाय विगत वर्ष मानकरे मु बहुत गच्छ लगे फूल गच्छ लगे फल गच्छ लगे विभिन्न प्रकार पनीपरिया गच्छ मध्य लगेछि किंतु चारि मास हला बाउ गच्छ लगे पारु नाही तथापि एई 15 दिन तळे मु गोटे हाइब्रिड फूल गच्छ एवं फल गच्छ लगेछि मो पक्षरे टिके नइबा कष्ट करै पालुछि
0: आ
2: बसि पारु नाही अंटा अपरेसन हला परे किंतु विगत दिन मानकरे मु बहुत गच्छ लगेछि
0: अच्छा निश्चय निश्चय एमती गच्छ लगातु हेले आग निजकु सुस्थ करंतु तापरे गच्छ लगेयाकु भी भगवान बहुत सुजोग आपनकु देबे तेनु प्रथमे सुस्थ हे जांतु आ गच्छ सब जत्न नै छेंति जो से सब बड़ हेछि ना नै
2: हां गच्छ बहुत बड़ हे गलानी आउ मो अपेक्षा मो बापा बहुत गच्छ लगै छेंति से गच्छ उडा को बहुत विराट विराट गच्छ हे गलानी
0: बर
2: गच्छ निम गच्छ मो आपा बहुत मो अपेक्षा मो आपा बेसी गच्छ लगेछन्ति
0: बढ़िया
2: से गच्छ उडा बहुत बड़ हेगलाणी मु जो गच्छ लगेछि से मध्यम धरणर हेछि आज्ञा
0: नाई नाई निश्चय निश्चय आपण गच्छ भी बहुत बड़ हो आमे एतिकी प्रार्थना करछु कारण आजिकाली गच्छ को बड़ हेबा को भी दिया जाउनी ता पूर्वरु कटा हे जाउछि तेणु आमे प्रार्थना करबो गच्छ मानकर आयुष बहुत लंबा हो ठीक अछि रहिली भाई आपण सुस्थ रुहंतु हाँ नमस्कार धन्यवाद सुस्थ रुहंतु आपण केमती ओके रहिली नमस्कार तो एथिले बुलु भाई केन्दुझर रु एवं से निज एक्सपीरियंस शेयर करले एवं तंगर बहुत इच्छा गच्छ लगेया को हेले टिके असुस्थ होय छन किछि कथा नै सुस्थ निश्चय हे जेबे आगो को सुनि नबा गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक जेमती कि सत्य प्रकाश भद्रकरु हमको कॉल करथिले जे मते गोटे डेडिकेट कर देबे गीतटिए तो तांकू डेडिकेटेड ए गीतटी इनंतु

0: Hey friends, tune karichanti 100.4 Akashvani FM Rainbow Katakku Dil Se Dil Tak Music Mitra Anurag Chaji Apananka Saha Apananka Sathi Re Dial In Live Chit Chat Re Au Katha Hoche Ame Gacha Sampark Kare Mane एजबत आपण केतोटी गछ लगाई छंती आ जतन नै केतोटी बंची छंती बा बढै छंती देखिन बा के कर छंती कॉल हेलो नमस्कार के कहू छंती को ठु कहू छंती
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: नमस्कार राजेश भाई जगसिंहपुर रु
1: आ गया
0: केमती अछंती
1: मो आज टोटली वर्षा रे भिजु छी दिन जाक पूरा वर्षा तो सेतु छी जे कोण कोण
0: आ अच्छा आउ बढ़िया आउ वर्षा ऋतु को आपण ही एन्जॉय करछंती मते लागु छी
1: आ वर्षा तो होउ जे हम तो कर्म

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मन्त्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमन्त्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री

0: प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
0: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट

0: एकम संयुक्त वक्तव्यम प्रकाशितम।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं संजातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमान समये समग्रं विश्वम् आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रांतरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 लाख तीर्थयात्रिणां प्रथमसमूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपाल

हे मां महामाई कमलिनी, तुम्हें जेउठी को भी आसना से जगह हे जाए पवित्र पापमुक्त एवं स्वच्छ। स्वच्छता को इते भल पाओ जे से भली जागरे तुमरो उपस्थिति ही नहीं जेउठी जेउ अंचल होई थाए मलिन, तेबे तुम पाद पद्मरे भक्ति भावरे जे चरण तले समर्पण करदेला निजको, तुमे ताको सदा सर्वदा दे थाओ अखंड आशीष।

0: मोहब्बत का फसाना।
1: ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में।
0: वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना।

0: बनाया।
1: चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे शाम 6 बजे
2: सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।

0: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
2: जदि आपण एबे कौनसी नूतन कार किंबा बाइक किणिबा योजना करुछंती, एहा आपणको एबे बहुत सुलभ मूल्यरे उपलब्ध हेबो। जीएसटी परिषद छोटो कार 350 सीसी रो बाइक एवं तीनि चकिया जान उपरे टैक्स 28% रो ह्रास करी 18% करि दैछंती। सेप्टेम्बर 22 तारीख 2025 ठारु लागू हेबाकु थिबा एही पूजा उपहार एंट्री लेवल गाड़ीगुड़ी को आहुरी सस्ता करिदेव, किंतु लग्जरी कार एवं बड़ बाइक 40% नुआ स्लाब्रे आसीजिबो, तथापि एसबु उपरे कम टैक्स लागिबो।

बस तू इतनी सी मोहब्बत निभा दे, बस तू इतनी सी मोहब्बत निभा दे कि जब मैं रूठूं तो तू मुझे मना ले। रूठना मनाना तो ऐसे ही चलता रहेगा जनाब, लेकिन हमारा जो ये बातों का सिलसिला है

कभी न खत्म होने वाला जो सफर है ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। रात गहरी होती जाएगी और हमारी बातें भी धीरे धीरे गहरी होती रहेंगी। बातों का रंग सुर्ख लाल और हमारा ये जो आपस का प्यार है वो भी तो लाल ही है। इसीलिए तो जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे लाल गुलाब ही पेश करते हैं। फिलहाल हमें लाल रंग लाल गुलाब से लेना है थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि आगे कुछ और है। तो चलंतु नवा गोटे ब्रेक सुनिबा ओडिया रे संवाद आउ किसी क्षण मध्य एमती रही था आम सह 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक रे दिल से दिल तक।

किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो जहा भी लिखा है जी पढ़ी होगा तो पढ़ी ना आओ पढ़ी वाला कि गोटे बही थी दरकार आ बही ठारू भल साथी मत लगुनि आउ केही हे परिबो। सो फ्रेंड्स ए जो चारिकोणिया जिनसडा समस्त पखरे थुआ हेची टिपा टिपी चालची सेतेबेले नथिला सेतेबेले आमे सबबेले कोठी कंसंट्रेट करथले कहले पढ़ा पढ़ी रे आउ एबिकार डेट रे पढ़ा पढ़ी केमती होचे सेटा त आपण जानिथिबे त कहबार कथा हैला पुनिथरे फेरी हबनी ए जो अजथा जिंस ताकु स्क्रोल करी करी करी करी कि आमे माने एते समय स्क्रोल करचे माने फ्रस्ट्रेटेड हेबा पर्यंत स्क्रोल करचे ताकु के साइड करी कि आमे जदि गोटे बही खोलिके पढ़िबा कोन असुविधा हबो। हाँ आपण पचारि परंती कोन सुविधा हबो आउ से सुविधा कोन हबो कहिबा आज म्यूजिक मित्र अनु संध्या सर रे जहाकु आपण सुनुछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे दिल से दिल तक। आउ हाँ आपण हमको सुनि परछंती न्यूज ऑन एआईआर आप माध्यम रे भी पूरा दुनिया रे फुल क्लैरिटी रे सह दिल से दिल तक। तो सुनु था तो गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक आउ आसिकी कहिबी जी कोन रहिछि बही पढ़िबार मजा।

आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है, कर रहे हैं आज आपकी आपके लिए दुआ, और दिल में सिर्फ आपका ही नाम है।

तारों की छाँव में मैं और तुम, तारों की छाँव में मैं और तुम। चलो फिर से पुरानी किताबों के पन्ने खोलते हैं, जो कुछ नहीं आया लबों पे अब तक वो किससे बोलते हैं। थक जाओ अगर तो देखना मुझे, थक जाओ अगर तो देखना मुझे, खामोश रहकर रात भर के लिए ख्वाब सजाना, कांधे पे सर रखकर तारों की छाँव में मैं और तुम।

सुन छंती गीतारे मितारे केवड़ा 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे दिल से दिल तक। तो छाई रे मुनि जको हजे दीछी सिति पाई तो निज छाई को खोजिबार आउ अवकाश नहीं आउ इच्छा नहीं कारण मो अस्तित्व तो अस्तित्व रे मिसी सारी छे। तो छाई रे मो छाई समाहित हो जाई छे।

बादलों की ठंडी छांव और हवा का ताजा गीत, बादलों की ठंडी छांव और हवा का ताजा गीत। प्रकृति से सुंदर दुनिया में कोई और नहीं प्रीत। प्रेम भल पाइबा जहां भी कहतु ना कहीं सबुत प्रकृति ही सिखाए ना, तेणु इंस्पिरेशन नबार अच्छे तो प्रकृति ठारु नियंतु। आउ एथिपाई सतर्क भी रुहंतु जे जेमिति प्रकृति नष्ट हेबनी, कारण जदि प्रकृति नष्ट हेइजिवो तबे सिखेबो के। तेणु ए प्रकृति को सुरक्षित रखिबा सह सुंदर आहुरी केमिति हेइपरिबो आमे ध्यान देवा दरकार। आउ ए प्रकृतिर छायारे आम जीवन बीतवा आवश्यक। कारण जीवन जीवार कला शिखाए ए प्रकृति, एवं सुदृढ़ हवा शिखाए ए प्रकृति। तेणु

0: ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक

0: सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है।

0: बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकको दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रहिजे आज अभुला स्मृति को नहीं किछे अभुला स्मृति एभली थाए जहाकु बारंबार मने पकेबाकु मनीष बाध्य हुए कारण सेठु से स्मृति ठारु मधुर आउ किछि न थाए सेहिपरि जणे हृदयस्पर्शी गायक मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना अजीज जी कि आमको इत्ते गीत दे जाइछंती बढ़िया बढ़िया गीत दे जाइछंती जहाकु प्रत्येक थर आपण माने रिक्वेस्ट भी करते शुणा पई आउ शुणा को बहुत भल लगे बार बार सुनले भी से गीत बहुत भल लगे एवं खास करी ओडिया सिने इंडस्ट्री को मध्य इत्ते सुंदर सुंदर गीत से देइछंती जहा केबे भी भूली हबनी आजिरो अभुला स्मृति गायक मोहम्मद अजीज को समर्पित

ट्यून करी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रही आज अभूला स्मृति को नहीं आमे आज कथा हूँ मोहम्मद अजीज विषय जी की आम ओडिया सिने इंडस्ट्री को अनेक सुपर टूपर हिट गीत दे जाइछन्ति केवल फिल्म गीत काहेकि अनेक आलबम गीत एभले अछि जहाकि तांको स्वर रे अमर हो जाइछि आउ आजि भी से सबु को अनुरोध करन्ति आपण तेबे कुआ जाइछि मोहम्मद अजीज सी रेयर आर्टिस्ट मानक भितरे थिले जो जहांको पई कौनसी गीत से एत सहजरे गाई दौले जहाँकि अन्य मानक बहुत जटिल मन हेबो किंतु से एत्ते सहजरे गाउथिले एवं तांका वॉइस रे एत्ते सरल शुभुथिला से गीत सबु जे जीवंत हो जाउथिला एवं जदि केही भी ताकु जो मैंने ट्राई करन्ति से मैंने आश्चर्य हुन्ति जे एत्ते कठिन गीत को केते सरल साबलील भावे स्वरे गाई मोहम्मद अजीज आ सब बड़ कथा निज सफलतार श्रेय से सब बड़े दियंती मोहम्मद रफी को से कहते जदि आज मुझे भी करपारे केवल मो गुरु मोहम्मद रफी से तांको गीत शुणी शुणी तांको गुरु ही मानी थिले एकलव्यंक परी तांको फॉलो करी चली थिले आउ फेत से गुरुंक आशीर्वाद फल से एते सफल हो पारी थिले

नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तो हुए तो साथी खोजु चंदी प्रशांत कुमार बिसोई कटकरु श्री कुरुवा गोपालपुर कटकरु एवं लेखचंदी नमस्कार रेडियो एंड मैम रेडियो मेन्स ऑल बिलोंगिंग इन फ्रंट एंड बैक ऑफ रेडियो ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେଇଦେବି। ତା ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନନା ନୂଆଗାଁ କଟକରୁ ଆମ ପାଖକୁ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚଳନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ଗୀତଟି।

0: यू एज माई को होस्ट इज धर्मेंद्र मणि राजेश
1: जी मेगा. और अब हम अपने मेहमानों का भी परिचय करा दें. हमारे साथ आज हैं ख्याति गुलानी पूर्व क्रिकेटर, जिशानुल यकीन पूर्व क्रिकेटर, और जी राजा रमन वरिष्ठ खेल पत्रकार. तो सवालों की शुरुआत राजा आपसे ही
2: जी.
1: टॉस की आज के मैच में कितनी बड़ी और क्या भूमिका रहने वाली है, इस बात को देखते हुए कि इस विश्व कप में द ओवल मैदान पर जो इससे पहले दो मैच हुए हैं दोनों चेस करने वाली टीमें जीते हैं.
2: मेरा अपना मानना है धर्मेंद्र के टॉस का कोई ज्यादा मायना नहीं रहेगा. सेमीफाइनल है, बात आ जाएगी नर्व पे, कौन सी टीम बेहतर अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी और अच्छा क्रिकेट खेलेगी उन पे वो डिसाइड करेगा. चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या गेंदबाजी करो, इट बी अ कीन कॉन्टेस्ट. दोनों अच्छी टीम है और इट बी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर. आप बाद में पूछेंगे जरूर कि आप बताओ कौन जीतेगा, लेकिन बताना बहुत मुश्किल काम होगा ये.
0: थैंक्स फॉर प्रॉम्प्टिंग अस राज. We would make sure that we put that question in front of you. Now, Khyati, we've seen with the South African team, they didn't have it easy in the group stage. In fact, against Bangladesh too, they stuttered before registering a 4-wicket win.
3: Yeah, I mean, they had few lapses there in their group. But I'm pretty sure that they are known for, you know, as a chokers also, and they can be as well. So let's...
0: Absolutely, we'd wait and watch. Or toss ke liye dono kaptan taiyar hai, Wolfart or Brunt.
4: Referee is ready. Nat, if you could get the coin, please, and give it a spin, please, Nat.
5: Tails.
6: Tails, cool.
4: Tail. Laura, you've won the toss. What are you going to do and why?
5: We're going to have a ball first today. I think it's quite a hard ground to defend later on. So yeah, hopefully we can chase later.
4: What is your team news?
5: We've got one change. Sunay's coming in for Dane.
4: Thinking behind that change?
5: Just a tactical decision. We just think it would be the best matchup today.
4: You've gone unbeaten since that first game. Do you feel now you're playing your best cricket or...

यज्ञ बराह हिरण्याक्ष को संहार करे देवता मानकर संकट दूर करने को कहते हिरण्याक्ष कोप करी प्रभु को गदा प्रहार कला माया बल रे ताकु से सही नेले से युद्ध भयंकर रूप धारण कला शेषे प्रबल वायु प्रवाह रे वृक्ष जेपरी भूई रे उपुड़ी पड़े सेपरी घोर रड़ी छाड़ी हिरण्याक्ष प्राण छाड़ा।

वेलकम बैक अगेन टू इनकरिशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक म्यूजिकल हम सफर बिस्वजीत अछि अपन मानक संगरे सुबह सकाळ रो सिलसिला स्टार्ट हे सारी छि अपन मानको कहतिले जे गच्छ लगेबार कथा आज होछि वन महोत्सव रो फर्स्ट डे किंतु ता सहित आज सारा देश पालन करछि आ गुटे बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण दिन आम समस्त जीवन रे जहां रही गोटे बहुत बड़ अवदान आम समाज रे आमे मैंने सुस्थ रहा आमे मैंने केमती भल चलिबा भल स्वास्थ्यवान भाव निजर दैनन्दिन कार्यक्रम कर समस्त रोग वैराग्य केमती आम मुक्त रही पार एप्रति जो मान सब बड़ अवदान थाए से मानी समर्पित आज दिन जो मानक अनेक समय इमोशनाल आम मैंने कहू द्वितीय भगवान बोली सतरे निश्चित भाव से जनकर जीवन को बंचाई दे पारंती एवं जनकर जीवन को सुंदर सरस करने अनेक उपदेश अनेक अवदान ठीक गेस कर आज आम देश पालन कर चिकित्सक दिवस बा नेशनल डॉक्टर्स डे आज जुलाई एक तारीख आज दिन की उत्सर्गीकृत जो मैंने निजर सुख शांति को पछरे पकई दिन राति एक कर दिखती गोटे रोगी गोटे पेशेंट रहा गोटे तार सेवाई देशर महान चिकित्सक तथा पश्चिम बंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय स्मृति में आज दिवस को भारत पालन कर डाक्तर दिवस भाव जदि आपण टिके पछक नहीं जी तेज आपण मन पकांतु कोरोना समय रे से महामारी कथा एवं से समय परिस्थिति विषय जितेबले अहरह 24 घंटा अनेक किड्स को पिंधि दिन राति एकाकार करी सारा विश्व रे सारा भारत वर्ष रे अहरह परिश्रम करथिले एवं आम मानंकु सेवा जगाई दउथिले से डाक्टर माने निज जीवन को बाजी लगे जो मैंने आमर प्रत्येक गोटे गोटे जीवन करुले अनेक संघर्ष से डाक्तर माने नीतिदिन अनेक हॉस्पिटल अनेक जगार आम मान स्वास्थ्य अनेक कथा को बुझुचंती आम अनेक सुस्थ सबल रहिबार पंथा को ग्रहण करिबार उपदेश आमको दौंती ए आकाशवाणी आपने से डॉक्टर मानकर उपदेश शुणुंटी आज सका 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम सबुदिन सका 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुणुंटी स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने डाक्तर माने आम जीवन ने जड़े जड़े एमती गुरुत्वपूर्ण मनीष जहां को आम निश्चित भाव में केवे लोड़ू किंतु समय परिवर्तन रे वर्तमान कौन होची ना अनेक जगह देखा पाऊ प्रति आमर व्यवहार एवं किछिटा जगह यार व्यतिक्रम देखा मिलूची।

सावन झूम रहा है और हम उनको याद भी कर रहे हैं। सतरे संगीता कारमाने के बेहले भी ए दुनिया रो जानती नहीं से अमर सब बड़े तंको स्वर तंकर ए गायन आम समस्त हृदय जो पहुंचे लगे सत बड़े कलाकार टी के मरे। ये सुंदर गीत सहित वर्तमान समय है

0: हेलो मोपसंदा।
1: हेलो जी बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया।
0: सत्येंद्र कुमार चंचोलिया जी, कैसे हैं आप?
1: जी आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और हमें उम्मीद है कि हमारा आकाशवाणी कटक परिवार भी अच्छी तरीके से होगा।
0: सब अच्छे हैं। आपसे तो हम पहले भी बात किए थे, फिर भी सारे श्रोताओं को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं काम।
1: जी आपको याद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे बात हुई थी, आपने इतने अच्छी तरीके से बात किया था, तो याद कैसे नहीं रहेगा?
1: खैर ये तो है, हमारा काम किराने की दुकानदारी का है।
2: अभी भी आप किराने की दुकान में बैठे हैं शायद?
1: हाँ बिल्कुल बैठे हैं।
2: आप वहाँ पे जो आवाज निकाल रहे हैं ना, खड़खड़ धड़धड़ का, वो आपके किराने दुकान का आवाज ही है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
2: अभी क्या ग्राहक नहीं है?
1: ग्राहक को ही सौदा
0: दे रहे हैं, इसी वजह से आवाज हो रहा है।
2: दोनों बातें एक साथ चल रही है।
1: हाँ इसीलिए तो आपसे थोड़ा हल्का सा व्यवधान हुआ हो बात करने में।
0: फिर भी आप इतने काम में व्यस्त होके भी हमको याद किए, इसीलिए धन्यवाद। घर में आपका कौन कौन है?
1: घर में एक जो सरकारी नारा है ना, हम दो हमारे दो।
2: अच्छा। आपने पूरी तरह से सरकारी नारे को सार्थक किया है? नहीं।
1: हाँ
0: आपके
1: हाँ,
0: दो बच्चे बेटा है या बेटी है? या
1: दोनों ही बेटे बेटे आए हैं, और अच्छा। हम सोचते थे कि ऊपर वाली की कृपा से, शुरुआती दो जो हमें फल मिलेंगे ऊपर वाली कृपा से।

0: ऐसे भी होंगे, उनको मैं स्वीकार करूंगा।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी बेटियों का नाम क्या है?
0: बड़े का नाम आदर्श है, छोटे का सार्थक।
2: आदर्श सार्थक।
0: हम पांच भाई हैं, सभी मिला के पांच भाइयों के, किसी पे दो किसी पे एक, इस तरीके से पांच लड़कियां हमारे हैं।
2: अच्छा।
0: तो उनको भी हम अपने ही तरह, वो भी बच्चे हैं, वो भी अपने हैं, बच्चियां हैं, वो भी अपनी हैं, हमारी हैं तो उनकी हैं। हमारे परिवार में ये सामंजस्य है।
2: बहुत अच्छी बात।
0: मतलब अगर हमारे अपने पिताजी की फैमिली का है तो हम पांच भाई और तीन बहनें
2: हैं। सब लोग साथ में रहते हैं या अलग अलग जगह में रहते हैं?
0: सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन उसमें एक मजे की बात यह है कि दो भाई एक साथ रहते हैं, रहते अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ से मतलब है वो एक ही जगह आगरा में रहते हैं। हम अपने घर पे रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, खाना पीना अलग अलग है, लेकिन आपस में ही है एक प्रकार से।
1: मतलब एक शहर में रहते हैं लेकिन अलग अलग
2: अलग अलग।
0: हाँ हाँ, अलग अलग। एक भाई हमारे जो है वो ग्वालियर में रहते हैं।
1: तो वो सब भाइयाँ क्या करते हैं?
0: वो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर पद पे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं वर्तमान में।
2: अच्छा।
0: अभी साल ही भर हुई है तभी रिटायर हुए हैं।
1: आपका ये जो किराना की दुकान है ये कब से है?
0: हमारी इस दुकान को 2015 से की थी।
1: उससे पहले क्या करते थे आप?
0: उससे पहले हमारा काम यही था, किसानी का काम था। एक तो भी हम आपको बताएं कि पहले हम गाँव में रहते थे, गाँव से आके फिर हम अपने जो जालौन जिले का हमारा शहर उरई है, यहाँ मैंने पहले दुकान की मोटर पार्ट्स की, और मोटर पार्ट्स के बाद फिर दुकान की किराने की। पार्ट्स भी दुकान अच्छी रही और किराने की दुकान भी अच्छी चली।
2: बहुत बढ़िया। आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं क्या?
0: हाँ हाँ, जो देखिए जो फरमाइशी कार्यक्रम रहते हैं हमारे, जैसे जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसको हम जरूर सुनेंगे।
2: समझते हैं क्या उड़िया?
0: नहीं नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ।
2: अगर आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं तो ये फोन करने का कोई मतलब ही नहीं।
1: हमारा तो सारे उड़िया का प्रोग्राम है, लेकिन आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं।
2: निराश नहीं करेंगे ना हमारे श्रोता को? आप अगर फोन लगाए हैं तो हम बात कर लेते हैं, मगर आप सुनिए हमारा प्रोग्राम, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत तो भाषा भी सीखना चाहिए सबको।
1: हाँ,
0: आपका सुझाव हम अपने अंतरात्मा में उतारते हैं।
1: जी जी, आपके साथ साथ हम उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो उड़ीसा के बाहर से कॉल कर रहे हैं, हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप जिस स्टेशन में बात कर रहे हैं उस स्टेशन की भाषा, मतलब उस ओडिया भाषा या फिर कोई भी जगह का भाषा, उसमें भी थोड़ा नॉलेज रखिए।
0: हाँ, उसके लिए एक यही विकल्प रहेगा कि कोई एक कार्यक्रम ले लें और उसको अविरल सुने।
1: हाँ, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं ओडिया में।
2: थोड़ा बहुत तो ओडिया हमको बोल के सुनाएंगे, चाहे एक सेंटेंस हो।
0: सुनेंगे? आप जासमिन जी और नमिता जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, आप तो नाम भी याद रखे हैं।
2: आपसे तो बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वो पसंद से?
0: फिल्म कन्यादान, पराई हूँ पराई मेरी आरजू न कर, मोहब्बत किसी को कहते हैं, इस फिल्म का एक गीत है।
1: आपका पसंदीदा गाना हम सुना देते हैं। फोन किए, बात किए, इसीलिए धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: साथी आपण भी जदि एमिती निज मनर कथा आम सहित बांटिबाकु चाहुचंती
1: आउ निज पसंद गीत सुनिबाकु चाहुचंती ताहले आमको कॉल करंतु
0: आमको कॉल करिबा पई आम नंबर हैला 0671230-3149
1: 0671230-3149 एटी आमरा फोन नंबर
0: प्रत्येक शुक्रवार दिन 12:00 गोटाई पर्यंत कॉल करिबार समय
1: भूलिबेनि साथी निश्चय कॉल करिबे
0: प्रथम चिट्ठी थर करी किए लिखी ना लिखी पारिबो
1: प्रथम देखा जो अनुभूति थाए ताकू कौन कही के भी कहा को कहिची ना कही पारिबो।

জারি রয়েছে আপনার ফরমাইসকে পূরণ করিবার সিলসিলা। ইয়েস, রেনবো এসএমএস এর সিলসিলা জারি রয়েছে। আপনার গোটে পর গোটে মেসেজ আসি চালিছি। তবে সাথী বর্তমান গোটে সুন্দর গীতর মেসেজ আমাকে করেছেন, মেসেজটি লিখুছেন। ये गाना सुनना चाहते हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। ये सुंदर सा गाना, प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी चलती का नाम गाड़ी से जरूर आपके लिए सुनाई दीजिएगा, सुनाएंगे हम अभी। और डेडिकेट कर रहे हैं सारे लिसनर्स को आकाशवाणी एफएम रेनबो के। और आपको आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैसेज किया है, आपका गाना जरूर शामिल होगा हमारे कार्यक्रम में। और आप बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिए कि आपका गाना कभी नहीं बज रहा है, जरूर आपका गाना बजेगा। इतना सारा मैसेजेस आता है इसीलिए कभी कभी आपका फरमाइश रह जाता है। নিশ্চিত ভাবে আমি সাথে চেষ্টা করব আপনার সমস্ত ফরমাইশ আজ পূরণ করা, যে সব মেসেজ করছেন এবং আগুটি সুন্দর গীত ফরমাইশ করছেন তপন কুমার দাস নুয়াপড়া কটক রু শুণবাই চাইছেন মহব্বত বর্ষা দেনা তুম সাবন আয়া হ্যাঁ। নিশ্চিত ভাবে এই দুইটি গীত আপনার স্টে টিউনড।

बम बम बम बम तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी

मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रजत, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रचित, सिर्फ एक बार।

गुड मॉर्निंग नमस्कार ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक डीपी मैंने देवी प्रसाद फोनी थरे ऐसी ऐसी आपनों का सहित दिल से दिल तक रा कनेक्शन बने रखिबो पूरा दिन सुनेबो आपनों को आपनों का मन पसंद रा गीता

बिना मोर नाही के हियान तुमे ही मोर दिन तुमे ही मोर भजन तुमे ही मोर बंधन तुमे ही ए मनर सब अभिमानर कारण आउ तुमे ही ए मनर सब अभिमान को दूरी दे पुणी शांति प्रकाश भक्ति रे भिजे जबार अपूर्व पवित्र पावन नाम प्रभु तुम पाई मु मो पाई तुमे तुमे तो जुगे जुगे भकतर भकत भावरे बंधा कालिया ठाकुर।

यज्ञ बराह हिरण्याक्ष को संहार करे देवता मानकर संकट दूर करने को कहते हिरण्याक्ष कोप करी प्रभु को गदा प्रहार कला माया बल रे ताकु से सही नेले से युद्ध भयंकर रूप धारण कला शेषे प्रबल वायु प्रवाह रे वृक्ष जेपरी भूई रे उपुड़ी पड़े सेपरी घोर रड़ी छाड़ी हिरण्याक्ष प्राण छाड़ी।

वेलकम बैक अगेन टू इनकरिशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत अछि अपन मानक संगरे सुबह सकाळ रो सिलसिला स्टार्ट ही सारी छि अपन मानको कहतिले जे गछ लगेबार कथा आज होछि वन महोत्सव रो फर्स्ट डे किंतु ता सहित आज सारा देश पालन करछि आ गुटे बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण दिन आम समस्त जीवन रे जहां रही गोटे बहुत बड़ अवदान आम समाज रे आमे मैंने सुस्थ रहा आमे मैंने केमती भल चलिबा भल स्वास्थ्यवान भाव निजर दैनन्दिन कार्यक्रम कर समस्त रोग वैरागुरु केमती मुक्त रही पार एप्रति जो मान सब बड़ अवदान थाए से समर्पित आज दिन जो मानक अनेक समय इमोशनाल आम मैंने कहू द्वितीय भगवान बोली सतरे निश्चित भाव से जनकर जीवन को बंचे दे पारंती एवं जनकर जीवन को सुंदर सरस करिबा पई मध्य दे पारंती अनेक उपदेश दे पारंती तांकर अनेक अवदान ठीक गेस करछन्ते आपण माने आज आम देश पालन करछि जातीय चिकित्सक दिवस बा नेशनल डॉक्टर्स डे आज जुलाई एक तारीख आज दिन की उत्सर्गीकृत जो मैंने निजर सुख शांति को पछरे पकई दिन राति एक कर दिखती गोटे रोगी गोटे पेसेंट रहा गोटे तार सेवाई देशर महान चिकित्सक तथा पश्चिम बंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय स्मृति में आज दिवस को भारत पालन कर डाक्तर दिवस भाव जदि आपण मानक मुझे पक्ष को नहीं जीवि तेज आपण मैंने मन पकातु करोना समय से महामारी कथा एवं से समय परिस्थिति विषय जितेबले अहरह 24 घंटा अनेक किड्स को पिंधि दिन राति एकाकार करी सारा विश्व रे सारा भारत वर्ष रे अहरह परिश्रम करुथिले एवं आम मान सेवा जगै दउथिले से डाक्तर माने निज जीवन को बाजी लगे जो मैंने आमर प्रत्येक गोटे गोटे जीवन करुले अनेक संघर्ष से डाक्तर माने नीतिदिन अनेक हॉस्पिटल अनेक जगार आम मान स्वास्थ्य अनेक कथा को बुझुचंती आम पाई अनेक सुस्थ सबल रहिबार पंथा को ग्रहण करिबार उपदेश आमको दौंती ए आकाशवाणी आपने से डॉक्टर मानकर उपदेश शुणुंटी आज सका 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम सबुदिन सका 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुणुंटी स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने डाक्तर माने आम जीवन ने जड़े जड़े एमती गुरुत्वपूर्ण मनीष जहां को आम निश्चित भाव में केवे लोड़ू किंतु समय परिवर्तन रे वर्तमान कौन होची ना अनेक जगह देखा पाच प्रति आम व्यवहार एवं किछिटा जगार यार व्यतिक्रम देखा मिलूची से आम मैंने समस्ते सचेतन हवा निहाती आवश्यक से सेवा को से कर्तव्य निष्ठापरता को एवं से समर्पण को आम सब सम्मान दवा उचित से आज दिवस को पालन करातीय चिकित्सक दिवस भाव में निश्चय भाव जदि आपणकर सराउंडिंग रे बध्य अछंती केही जने डॉक्टर एवं आपणकर प्रियजन जदि डॉक्टर निश्चित भाव तांको आज विश करबा पई भूलिबेनी तांको आज थैंक यू कहबा पई भूलिबेनी एवं आकाशवाणी एफएम रेनबो परिवार तरफ रु आमको सुनुथबा प्रत्येक डॉक्टर्स मानंकु प्रत्येक चिकित्सक मानंकु जो माने आम पई जाग्रत प्रहरी भाव रे अहरह परिश्रम करुछंती से मानंकु बिग सैल्यूट एवं बहुत बड़ा थैंक यू सहित विश करछु हैप्पी डॉक्टर्स डे।

साथी आज डॉक्टर्स डे सहित मध्य इंटरनेशनल पोस्टल वर्कर्स डे हाँ साथी जुलाई एक आज दिन बहुत इम्पोर्टेंट से लोक मानी आज डिजिटल जुगरे मोबाइल रु गोटे क्लिक रे मेसेज पहुंच जाऊछि सत किंतु दिने डाकवाला से साइकिल रो घंटी रो शब्द पूरा गाँव रे खुशी आ आशार लहरी खेली दूथला सहरर से निबुज घर भितर जितेबले डाकवाला कंठ सुभी आसुथला वयस्क बापा मा दौड़ी आसुथले कबाट पाखुकु हुए था आसी छि तांकर से

सावन झूम रहा है और हम उनको याद भी कर रहे हैं. सतरे संगीता कारमाने के पहले भी ए दुनिया रुझान थी नहीं से अमर सब बड़े तंकर स्वर तंकर ए गायन अमर समस्त तंकर हृदय रे जितने बड़े पहुंचे लागे सत बड़े कड़ाकर टीके भी मरे नहीं. ये सुंदर गीता सहित वर्तमान समय है गलानी.

0: दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
1: ठीक है जी, सुनी दो छू सुंदर की तटी अपन को।
0: धन्यवाद मेरा,
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे

0: हेलो मोपसंदा।
1: हेलो जी बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया।
0: सत्येंद्र कुमार चंचोलिया जी, कैसे हैं आप?
1: जी आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और हमें उम्मीद है कि हमारा आकाशवाणी कटक परिवार भी अच्छी तरीके से होगा।
0: सब अच्छे हैं। आपसे तो हम पहले भी बात किए थे, फिर भी सारे श्रोताओं को बता दीजिए कि आप क्या करते हैं काम।
1: जी आपको याद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे बात हुई थी, आपने इतने अच्छी तरीके से बात किया था, तो याद कैसे नहीं रहेगा?
1: खैर ये तो है, हमारा काम किराने की दुकानदारी का है।
2: अभी भी आप किराने की दुकान में बैठे हैं शायद?
1: हाँ बिल्कुल बैठे हैं।
2: आप वहाँ पे जो आवाज निकाल रहे हैं ना, खड़खड़ धड़धड़ का, वो आपके किराने दुकान का आवाज ही है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
2: अभी क्या ग्राहक नहीं है?
1: ग्राहक को ही सौदा दे रहे
0: हैं, इसी वजह से आवाज हो रहा है।
2: दोनों बातें एक साथ चल रही है।
1: हाँ इसीलिए तो आपसे थोड़ा हल्का सा व्यवधान हुआ हो बात करने में।
0: फिर भी आप इतने काम में व्यस्त होके भी हमको याद किए, इसीलिए धन्यवाद। घर में आपका कौन कौन है?
1: घर में एक जो सरकारी नारा है ना, हम दो हमारे दो।
2: अच्छा। आपने पूरी तरह से सरकारी नारे को सार्थक किया है, नहीं?
1: हाँ
0: आपके
1: हाँ,
0: दो बच्चे, बेटा है या बेटी है? या
1: दोनों बेटे बेटे आए हैं, और अच्छा। हम सोचते थे कि ऊपर वाली की कृपा से शुरुआती दो जो हमें फल मिलेंगे ऊपर वाली कृपा से, जैसे भी होंगे उनको मैं स्वीकार करूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपकी बेटियों का नाम क्या है?
1: बड़े का नाम आदर्श है, छोटे का सार्थक।
0: आदर्श सार्थक।
1: हम पांच भाई हैं, सभी मिला के पांच भाइयों के, किसी पे दो किसी पे एक, इस तरीके से पांच लड़कियां हमारे हैं।
0: अच्छा।
1: तो उनको भी हम अपनी ही तरह, वो भी बच्चे हैं, वो भी अपने हैं, बच्चियां हैं, वो भी अपनी हैं, हमारी हैं तो उनकी हैं। हमारे परिवार में ये सामंजस्य है।
2: बहुत अच्छी बात है।
1: मतलब अगर हमारे अपने पिताजी की फैमिली का है तो हम पांच भाई और तीन बहनें।
0: सब लोग साथ में रहते हैं या अलग अलग ज्यादा में रहते हैं?
1: सब लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन उसमें एक मजे की बात ये है कि दो भाई एक साथ रहते हैं, रहते अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ से मतलब है वो एक ही जगह आगरा में रहते हैं। हम अपने घर पे रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, खाना पीना अलग अलग है, लेकिन आपस में ही है एक प्रकार से।
2: मतलब एक शहर में रहते हैं लेकिन अलग अलग
0: अलग अलग।
1: हाँ हाँ अलग अलग। एक भाई हमारे जो है वो ग्वालियर में रहते हैं।
2: तो वो सब भाइयाँ क्या करते हैं?
1: वो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर पद पे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं वर्तमान।
2: अच्छा।
1: अभी साल ही भर हुई है तभी रिटायर हुए हैं।
2: आपका ये जो किराना की दुकान है ये कब से है?
1: हमारी इस दुकान को 2015 से की थी।
2: उससे पहले क्या करते थे आप?
1: उससे पहले हमारा काम यही था, किसानी का काम था। एक तो भी हम आपको बताएं कि पहले हम गाँव में रहते थे, गाँव से आके फिर हम अपने जो जालौन जिले का हमारा शहर उरई है, यहाँ मैंने पहले

0: दुकान की मोटर पार्ट्स की, और मोटर पार्ट्स के बाद फिर दुकान की किराने की। पार्ट्स भी दुकान अच्छी रही और किराने की दुकान भी अच्छी चली।
1: बहुत बढ़िया। आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं क्या?
0: हाँ हाँ, जो देखिए जो फरमाइशी कार्यक्रम रहते हैं हमारे, जैसे जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसको हम जरूर सुनेंगे।
1: समझते हैं क्या उड़िया?
0: नहीं नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ।
1: अगर आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं तो ये फोन करने का कोई मतलब ही नहीं।
2: हमारे तो सारे उड़िया के प्रोग्राम है, लेकिन आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं।
1: निराश नहीं करेंगे ना हमारे श्रोता को? आप अगर फोन लगाए हैं तो हम बात कर लेते हैं, मगर आप सुनिए हमारा प्रोग्राम, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत तो भाषा भी सीखना चाहिए सबको।
2: हाँ,
0: आपका सुझाव हम अपने अंतरात्मा में उतारते हैं।
2: जी जी, आपके साथ साथ हम उन लोगों को भी बोल रहे हैं जो उड़ीसा के बाहर से कॉल कर रहे हैं, हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आप जिस स्टेशन में बात कर रहे हैं उस स्टेशन की भाषा, मतलब उस ओडिया भाषा या फिर कोई भी जगह का भाषा, उसमें भी थोड़ा नॉलेज रखिए।
0: हाँ, उसके लिए एक यही विकल्प रहेगा कि कोई एक कार्यक्रम ले लें और उसको अविरल सुने।
2: हाँ, आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं उड़िया में।
1: थोड़ा बहुत तो उड़िया हमको बोल के सुनाएंगे, चाहे एक सेंटेंस हो।
0: सुनेंगे? आप जासमिन जी और नमिता जी बोल रहे हैं?
2: हाँ, जी आप तो नाम भी याद रखे हैं।
1: हाँ, आपसे तो बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वो पसंद से?
0: फिल्म कन्यादान, पराई हूँ पराई मेरी आरजू न कर, मोहब्बत किसी को कहते हैं, इस फिल्म का एक गीत है।
2: आपका पसंदीदा गाना हम सुना देते हैं। फोन किए, बात किए, इसीलिए धन्यवाद।
0: शुक्रिया।